मुरारी रब अब चल नीव सारी बाल धन तकिया तेरा तू भारो ठाकुर मेरा जिन जिन साध

पंजवा पार ब्रह्म निवाही पूरी काई बात न रही आयूरी गुरु चरण लाए निस्तारी हर हर नाम समारी अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया हर

प्रभ रव रहे आपर पूरी हेम कुशल भया इस नाना पार ब्रह्म बितो कुरबाना गुर के चरण कवल रिद तारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सुर

मिल त्याई है मन बाशत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया।

सर्व गुणा सुखदायो। मंदर चढ़ के पंथ निहारो, नैन नीर भर आयो। हाँ हाँ पीत भयो है बीचो, सुनत

गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ। जैसा बालक पाए सुपाई, लाख अपराध कमावे, कार्य उपदेश छिड़के बहु भांति।

अब भेद जाने ता किस पह आख सुनाई है, कहने कथन ना पीजे गोविंद, हर पावे पैज रखाई है। अवर ओट मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख बसंती चौरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

आप प्रभ स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संतां तूड़ी।

प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

सो प्रभ अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना सोठ महला पंजवां।

आस अपने की कारज आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण कल दिन धारी नानक सरनी आया मन चिंदिया फल पाया सोठ महला पंजवा सदा सदा हर जापे प्रभ बालक राखे आपे शीतला ठाक रहाई विघ्न गए हर नाई मेरा प्रभ हुआ सदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की सब जी।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया

पन्ना आनंद कर है नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर राव।

होता। जो सिवर है किसकी गत हुए, उधर है सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एह पूरन हर तन पाया। कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म।

नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, बिरलै किन्हीं जाती रहाउ, गुरबाणी गावह पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम त्याया, पूर्व लिखिया पाया, सोठ महला पंजवां, गुरपूरा आराधे, कार्ज सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो हो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया, रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी, सोठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, त्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाइए रहाउ, ज्यों कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस पावे।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संस्था।

सगली दास को सुमत दीती रहाओ प्रभ सगले थान वसाई सुख शांत फिर आई नानक प्रभ सरनाए जिन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवां सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट होते आनंदा दुख गया हर गाईए हर रस पीव हो पाई नाम जप हो नामो अराध हो गुरपुरे की सरनाई रहा तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई

आओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा पूरा गुर पूरी मत जाकी।

सिमर माधो हो हे पतत पनीत। काल ब्याल ज्यों पर्यो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो।

अनपूरन सब मही अवर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोठ महला नौ मन रे कौन कमात तैलीनी पारदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुकत पंथ जानियो तै नाहन धन जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया ना हर भजियो

तै खोजत उदयाना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज

रहाउ अकाल पयो त्रू जा कह सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाउ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे। कौन नाम गुर जा कै सिमरै, भव सागर कहो।

अपन न्याय सोठ महला नौवा माई मह के बिद लखो गुसाई महा मोह अज्ञान तिमर मो मन रहयो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहयो निसबासुर नह छूटी अधमाई साध

बिखियन को तावत केहे बिदरूप को ताहि रहाओ बेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावे पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावे मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेते हो चिंता मन काटी जब की फांसी सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच

इन स्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यों भयो ना सूदो।

अर्ख सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग्य जग ते रह नरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेहे घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेहे एहे जुगत पछानी नानक ली।

बहुत हित जासियो सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जां सियो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला घर पहला अष्टपदिया चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो। मड़े मसान ना जाए कृष्णा राच ना पर कर जावा।

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

सुहाय। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वडियाय। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम ना पाई। सुन संवाद महा परमार्थ, तीन पवन पत नाम। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहाम। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ाम। मन मुख झूठ लह पैमान, आपे ज्ञान अगाम। जिन चाखिया से साध जानन, ज्यों गुंगे मिठियाई। अकथ का क्या कथिय भाई, चालो सदा रजाई। गुरदाता मेले ता मत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई, होर क्या को करे चतराई। एक भरम भला एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे कछ होए अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सत

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

खंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ बिख माया चित मोहया भाई चतराई पत खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आखिए भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यो बैरागी है भाई दर घर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनहु गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाई है भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूढ़ है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूढ़ पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना भाई।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

आपे बख्श मलाई, गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लेर लाई रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारी, साचा शब्द विचार, भौजल पार उतारियन पाई, सतगुर बेड़ चाड़, मनूरै ते कंचन पे पाई, गुर पारस मेल मलाई, आप छोड़ नाउ मन वस्या पाई, ज्योति ज्योत मलाई, हों वारी हों वार न पाई, सतगुरु को सद बलिहार जाओ, नाम निदान जिन दिता पाई, गुरमत सहज समाओ, गुरबिन सहज ना उपजै पाई, पूछो हो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विचों आप गवाई, गुरमति पहु उपजै पाई, पहु करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाई पाई, सच नाम आधार, जो सतगुर सेव है अपना पाई, तिनकै हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना पाई, कुल भी लई बख्शाई, सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होय, नानक नाम हर मन वसै पाई, तिस बिघन न लागै कोय। चौथ महला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा पाई, पूरे भाग मलाई, सदा सुख सुहागणी पाई, अन दिन रतिया रंग लाई, हर जी तू आपे रंग चढ़ाई, गावो रंग राते हो पाई, हर सेती रंग लाई रहाओ, गुर की कार कमावनी पाई, आप छोड़ चित लाई, सदा सहज फिर दुख ना लगई पाई, हरे आप बसै मन आई, फिर का हुक्म ना जानी पाई, सा कुलखणी कुनार, मन हटकार कमावनी पाई, विणना वै कूड़ियार, से गावह जिन मस्तक भाग है पाई, पाए सच्चै बैराग, अन दिन राते गुण रवह पाई, निरपहो गुर लिवलाग, सबना मार जीवाल दा पाई, सो सेव हो दिन रात, सो क्यों मनो वसारी है पाई, जिस दी वट

भाई मिल प्रीतम साच समाव। एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मुह देसी जाय। किड़ी पवंदी मोहायन भाई विख्यानो लो भाई। नाम संभाल है सुख वसह भाई सदा।

पंजवां घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपनी दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निध भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पीटिए पाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेविए पाई ब्रह्म पौ होए नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होए परगास गुरबचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई एत दिन मरिए चूर करन करावन समरथ पाई सर्ब कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होवै परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई ऐनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई

जिस प्रतीत न आवे पाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हऊ तिसके बल जाओ। वो निर्गुण आरे पालदा भाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटी है भाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है भाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसर भाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मर दे चूर। अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटन हार। चोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारी। तैं अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारी। माया मोह बधाया जिसनों की तो कर्म आप प्यारी।

अवरना करना हार प्यारी अंतर जामी एक रहाव कोट जन्म भ्रम आया प्यारी अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारी बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारी ते लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिया प्यारी जो साची सरनाई मिठा करके खाया प्यारी तीन तन की तारोग कौड़ा हुए प्रतिष्ठिया प्यारी तिस्ते उपजिया सोग भोग पुंचाए उलायन प्यारी उतरे नहीं वजोग जो गुरमेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी इतना आवे मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी से तन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरे नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत संग ना कीजई प्यारे जे का पार वसाई जिस मिले हर विसरे प्यारी सो मोहि काल उठ जाय मन मुख ढोई नह मिले प्यारी दरगाह मिले सजाय जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिन्ना पूरी पाय संजम सहस सियान पां प्यारी इक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलाय उन प्यारी साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अन दिन कीर्तन गुण रवे प्यारी अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी भवजल पार परे जिस भावे तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिस का तान तिस सरनाई टह पे प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद बिचारियो निवल पुअंगम साधे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक हम बुद बाधे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका।

कर पाती रहे हो, नगन फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरै एह बिद जे

ता सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवे सच्चा सोए ससुरे पेये पैवस्ती सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले खुशी रावे फिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देव

या हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिर जन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सुआरिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफल्यो सतगुर।

पुरख सुजान कुल उधारी अपना सोजन होवे परवान गुरमुख मोए जीवन दे परवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम ते आई है सत संगत साधु लग हर

फुरमाइए कौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइए। सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखियास मोह ठगौली पाइन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेतेओ से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहु अत घना पुत कलत ना साथ कोई जास लोकां विच मोह काला हुआ अंदर उबे सास मन मुखा नु को ना वे सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखा नु सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास। महला तीजा से सहन से सजना जे गुरमुख मिलह सुपाय सतगुर का पाना अन दिन करह से सच रहे समाय दूजे पाए लगे सजन ना आखिए है जे अवमान करह वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगीए फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुख दाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा भरम भुलाया अमृत ताज बिक संग्रह करत आप खुआया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन सीतल होया

वीर का जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी, सोहर पुरख अगम है, कहो कित बिद पाइय, तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो, जन क्यों ते आइय, निरंकार निरंजन हर अगम, क्या कह गुण गाइय, जिसे आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाइय, गुरपूरै वेखा लिया, गुर सेवा पाई है। श्लोक महला तीजा, ज्यों तन कोलू पीड़ी है, रतना पूरी दे, जियो वन्या चौखनी है, सच्चे संदड़े ने, नानक मेल ना चुकई।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरै ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिष्ट सवार सिर तंदै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाए दा। सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा।

आए। इस जग में नाम अलब है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना, हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाद लगाए। एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके, हट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी, हों मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भव पया, बड़ भाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ, हों मैं शब्द जलाए। सच रते से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले नाउ पाया, नानक सुख समाए। पौड़ी।

या पकड़ चलाया काल ता खरा द्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा।

हट सच रतनी भरे भंडार गुर कृपा ते पायन जे देवै देवनहार सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवारन हार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ जू विष्टा काग खावई जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावई हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप लह जावई सलोक महला तीजा सेखा चौ चकिया चौ आया इहो मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुरे अगै टै पौ सब किस जाने।

चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवे हिम्मत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह सुमाए पौड़ी हर चोली दे सवारी तड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझे बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझे इहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाने गुरमुख होए सो भउ करे अपना आप पछाणे गुर प्रसादी।

आई, नानक गुरमुख मिला वढाईया, जे आपे मेल मलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे, यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली, नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नदर करी। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान। पौड़ी, गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाइया, जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना भाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया, गुर सतगुरु।

पिच्छा सुख नहीं, मर जम्मे वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हो एक वार, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चा दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते एक अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरे हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवे सब थाए, पारस परसे है पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभे आए, नानक गणते सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवे थाए, महला तीजा।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारै तप्यो सुत्या गई विहाय सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाए जगत जलंदा डिठ मैं दूजे पाए नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याए।

हर सेती मन रव रहया सच्चे रहे आसमाय। नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करै शिंगार। फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार। साक सुत साक लखणी नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी। हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी। जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा अरादिया तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी। सलोक महला चौथा हर दासन स्यों प्रीत है। हर दासन को मित हर दासन कै वस है। ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे। कर प्रीतम स्यों नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ। सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है। सा हर की वडियाई हर अपनी वडियाई भाम दी। जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा। हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है। हर पैज रखो भगवान। महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिले ता पूरा पाईए हर रस रसन रसाई। पौड़ी रैन दिन सप्रभात तू है ही गावना। जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावना।

गुर का पाणा चेतना आवे अपने सुहाए फिराही कृपा करे दे अपनी ता नानक शब्द समाही महला चौथा मनमुख माया मोह व्यापे दूजे भाई मनुआ फिर नाही अन दिन जलत रह दिन।

जाहि। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ नहाया। श्लोक

नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नाम पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आगे भया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बद्दा थे हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला ता की रजाए लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म होआ हासल तदे होए लिपड़िया हंड है जी कमांदे महला दूजा नाक नाथ खसम हाथ किरत धके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्ला आप हाट बहालियो न आपे रचन रचाए आपे ही काल्यो न आपे जंत उपाए आप प्रतपाल्यो न दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्यो न नानक भगतां सदा आनंद भाओ दूजा जाल्यो सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वड्याईया दे ना पछोताए हों हर कै सद बलिहार ने जित सेवै सुख पाए नानक गुरमुख मिल रह हम मैं शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लाय आपे बख्श कर।

तेन निज करवास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रप, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भूतपूर्व

संसार अंध गहेरा चौदिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदार रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गाडले कंचन पारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

ऊपर माहे लिखे ब्रह्म ज्ञानी कहो कबीर जन पये खालसे प्रेम भगत जे जानी कर दूजा दोए

जाई। हमरा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाऊ बाजीगर डंक बजाई।

जाई, सब कथ कत रही लुकाई, जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हृदय रहे आसमाई, गुर किंचत कृपा कीनी, सब

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाव। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम घर घर मई है।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया।

मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतल है मलना रहाउ लौकी अठ सठ तीरथ नाही

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटियाउ भा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

लंक पपीखण आप्यो हो सोरठ घर तीजा अणमड़िया मंदल बाजै बिन सावन कन हर गाजै।

मिल पारस कंचन होया मुख मन सारतन परोया निज पाओ पया ब्रह्म भागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर।

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीरे, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूतन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलाभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो केह लेख ना बिचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस दीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना परे अपर माया।

काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिद कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कहरवदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम भये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाति साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

जल की पीत पवन का थंबा रक्त बुंद का गारा आड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी।

रोग गंठ गंठ खराब ऊंचा हों बिन गांठे जाए पहुंचा रविदास जपै राम नामा मोहे जम सिहो नाही कामा राग सोरठ बाणी भगत भीखन की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नैनो नीर बह तन कीना पए केस दुध वानी रूदा कंठ शब्द नहीं उच्चर अब क्या करह परानी राम राय हो हे बैद पनवारी।

वेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

किस पाइए। पूर्व लिखे का लहना नाम खसम का चेतना किया। कपटी कपट कमाना जाम द्वार जा पकड़ चलाया।

राखै जा सोई, जह देखा तह रहया समाई, तुद बिन दूजी नाई जाई, जे को करे कीते क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुण उठ

नहीं कोई। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाई, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सिंह चित लागे फिर का न खाई रहाउ, सच सिमरिया हुए परगास, ताते बिखिया।

काती कूड बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाणे, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान सबंध सोई दिल तोवे, मुसलमान सोई मालक होवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान, तनासरी महला पहला का तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही, नाही सत का टप, था नष्ट जग प्रिष्ट होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी तामी तह नाक पकड़ है, ठगण को संसार रहाओ, आंट सेती नाक पकड़ है, सूझते तिन लो, मगर पाछे कछ ना सूझे, एहो पदम अलो, खतरिया का धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, अष्ट साज साज प्राण सोदह, करह वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास, तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, ऐसी आरती होए, भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजन।

एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोई तिसकै जान।

हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिं को होए जाते तेरे नाम वासा तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो तन अखोट नान फुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाए गुर कृपा ते हर मन वसा।

सुख मानी अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाय, गुर प्रसाद वसै मन आय, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

मैं मलत होए साची भगत सदा सुख होए जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख ना

बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

हर सरनाई राम नाम राते भगत दृढ़ाई भगत करे जन वडियाई पाई काच रखे सुख सहज समाई।

क्या पावा तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

इस मन की सो जी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा, गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई, अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सो।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काक्या तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काक्या तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार पवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत साची।

लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हम मैं विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हम मैं जाए आपे बख्शे लए मलाए विख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबै न पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोए जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम बलिहार है।

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन देहु अपना ऐसी बख्श करी जय भणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर उड़तारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हों मैं मारी, हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी, तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत

निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारे गत में तो कह ना सकह प्रभु हम क्यों कर मिलह अभागी हर प्रभु स्वामी कृपा धारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब के लिख पाप लह जानी रहा ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिन की तूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाथी भूख पुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महल।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निम खाती।

लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुटह हम छुटकाकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जप्यो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारी जिन जप्यो हर बचनाकी लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदाकी तुम वड पुरख वाडे अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उरतार बीचार मरार रमो रम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष हर संग हरि सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोलह मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी।

गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पय है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर भौजल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उत्तम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है संत मारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को बिरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुनहे तेरा जस स्वामी हम तिनकै सद

तीजै, नानक हर सिमरन का है चाव, तना श्री महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवह, सब गावह हर हर उत्तम बानी, गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाउ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभु चोज बडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिले।

प्यारी सब तुझे त्यावहि मेरे साह ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लकिया तेरी कुदरत कौन बिचारी जल थल महियल रविया सरब ठाई अगम रूप गिरधारी कीर्त करह सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मरारी ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी मोहल्ला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन बासन दे कर गढ़हा गाडी रहाउ। ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसारे ओ पीतर

मन गायो, भयो परगास सदा सुख मन मह, सतगुर पूरा पायो रहाओ, गुण निदान रिद भीतर वसिया, ता दुख परम पहु भागा, पई प्राप्त वस्त।

सहज सुख सुभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्ही त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै

ਪਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਰਹੇ ਓਲਾ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਜਨ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਾ

साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्धभ भस्म संगीत अमृत संग ना

आनंद राज पाई, मुकटे निमुख बुलाई, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई, नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अगाई। तनासरी महला पंजवां, जिन कीने वस अपने त्रै गुण, भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे, क्या एहो जंत विचारा। प्रभ की ओट गही तो छूटो, साध प्रसाद हर हर हर गाय।

ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुरे अपनी जिन ओह चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर ले आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो हम बारक तुमरे तारे।

आओ कोट पराध हमारे खंडो हो अनक विधि समझाओ हो हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें आपन बिरद रखाव हो तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तना।

निर्मोल कहर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन तनासरी महल।

पीकै मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछै नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवां मेरा लागू राम सिउं हेत सतगुर मेरा सदा सहाई दिन दुख

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रति बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हर नेरा तनास

काल आन संयम किछ ना सूजै ए जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन

कथै शास्त्र भगत करहै विचार मुक्त पाई साध संगत दिन सजाए अंधार चरण कमल आधार जन।

पधारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

साध की शोभा आत्म चकीनी, संत वडाई हर जस कीनी, आनंद संतन कै भगत गोविंद, सुख संतन कै बिनसी चिंद, जह साध संतन होवै एकत्र, तह हर जस गावह नाद कवित, साध सभा मह आनंद विश्राम, उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

पास मिल साज संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

आई तनातरी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो हर बिन मुक्त ना काहू जियो रहाओ मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा इहो उपदेश मोको गुर दीना जियो इस सियो ना

अराध हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजे तनासरी महला।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक है निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल क्लेश लोभ मोह महा पौजल तारी रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी

निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर मैं बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाली। तनासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोबिंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नवनित रिद सिद्ध हर, लाग रही जन पाई, संतन को अंध सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई, तनासरी महला पंजवा, नाम गुर दियो है अपने, जां कै मस्तक कर्मा, नाम दृढ़ावै नाम जपावै, तां का युग मह धर्मा।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्ब सुख भोग रस देवै।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिद पार उतारी रहाओ तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनस ना कतहू जात सतगुर पूरै कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को भई हमारी गात रहाऊ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी रहाऊ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवां सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरै जाति रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहा।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख।

मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ। जह जह देखो तह तह स्वामी कोए ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ जाकांत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवां घर नौवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा कर तारु हो पुजा गह कूप ते काड लेव हो रहाउ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन ना राखन हारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवां हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै मिटह कमाणी पाप चिराणी साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह। सरल समरथ अकथ अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्वक पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापे सोग अगन तिस जन ना व्यापे सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर धन दुख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई। तनासरी महला पंजवां तृप्त भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाउ। अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया। तनासरी महला पंजवां गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ। कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम त्याया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती ये है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। पोह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निध पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस, हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, त्रि भवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगत हारी, अनक जतन कर काल संताई, मरन लखाई मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप।

आस मह सोई जह देखा तह अवर ना कोई। गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आईय जाइए रहाउ। सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे। हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा। तन मह मनुआ।

मिले मलाई, आप दिखावे आपे देखे, हाथ ना पतीजे ना बहु पिखे, काड़ पांडे जिने अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे, नाम जपे पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बन वासा, परमत डोलत भए उदासा।

तेरा रंग लावे पड़े रे सगल भेद नह चूके मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाइए रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै जिस भेटी है सफल मूरत करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रो पेखै मन हठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल ज्यो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माई गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल यात्रा आवण जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दास पुरब सदा दसाहरा हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरनी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल धोई है गुणहा हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अनदिन हरक साचा दुख

सत संगत मिलै वड भाग ता हर रस आवे जीओ दूजे भाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जीओ माया दुख मोहिया हों मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया धोहिया दूजे भाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जीओ सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जीओ प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर किरपा लेहो मलाए महल हर पावे जीओ नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जीओ अमृत हर का नाम साध संग रावी है जीओ पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की पासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक धार कृपा सदा हर गुण गावी है ने धरिया धर एक नाम निरंजनो जीओ तू दाता दातार सर्व दुख भंजनो जीओ दुख हरत करता सुख स्वामी सरन साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पल एक माहे तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै भंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा धारिया जीओ मोहे निर्गुण नीचे अनाथ प्रभ अगम अपारिया जीओ दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्स अपार नाम अमोलै जीओ नित जपह तेरे दास पुरख अतोलै जीओ संत रसन बूठा आप तूठा हर रसै सेई मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागया सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाऊ हनुमान सर गरुड़ सुमाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कबला नहीं जाना कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते घड़िया आप कटे तन सीजै काल अहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कवन बिध कीजै सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो को है काका रहाउ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु ना बूजै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना

ज्यों धरनी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे भवरला, ज्यों कोकिल को अंब बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, चकवी को जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसुला, ज्यों तरनी को कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, बार्क को जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, साधक सिद्ध सगल गुण चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, तांचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू, हर हर नचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंडी महसागरा, रहाऊ

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर, मोर मन माने जन को पूर्ण दीजे, हौ बल बल जाऊ रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल।

ज्योत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पों नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सं

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नानरी कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मफीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार्य खार मफीत सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जान पूर्ण परमानंद बखाने।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही रह रतन नाम हर बसिया।

था, जैत श्री मोहल्ला चौथा, हीरा लाल अमूल कह पारी, गिन गाहक मीका काखा, रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बकानू लाखा, मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मलायो गुर साधु, गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन घर रतन ना लाखा, ते उजड़ भरम मोए गावारी, माया पुआंग बिख चाखा, हर हर साध मेलो जन नीके।

गुर साधु मिल साधु कपट खला न रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाउ तन तन बड़ भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लागबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाई जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात कीजै हर बांझा।

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिलिया प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाह, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल सतसंग।

कर कीरत जस अगम अथाह खिन खिन राम नाम गावाह मोको तार कृपा मिलिय गुरदाती हर नानक भगत।

खिन खिन भगत करह दिन राती, गुरमत भगत अमाहाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लै लाहा, गुरमत पंच दूत वस आवह, मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम।

अवस्था मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन मिल सत

तोल अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री।

सब महियो वर्ण ना दिसै चिन्ह ना लखियै सुहागन सांत बजहियो सर्ब निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवां तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बेअंत बड दाता मन गिहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबहू चूरों बुझ प्रभ को जय श्री महला पंजवां लड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके घट घट।

जिन रस रस हर गुण गाई, जैत श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे मह दीप रहाओ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम। चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन। मने चिराव हो धूप, हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे। दृढ़ कर गए

या रस मह मगन होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चातरक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारु हर प्रिय।

लाड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंध कूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हिरदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को भओ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

हमको त्रास भयो उर अंतर, शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन, करत पाप अबहारा

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दास प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना तरीजे। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रक जिवैत संतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रिय हबे सखिया मूह कही ना जेहिया। यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस किते हिया। हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा। तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा। जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया। नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया। यार वे पेरे आपन पाना किस निशी छंदा। यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने। बाहां पकड़ ठाकुर हौ किदी गुण अवगुण ना पछाणे। गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता।

महामंगल रहस्य थिया फिर दयाल साधना वरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रय अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महा।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन तां कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोय, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल महियल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बेअंत गुणता के क्या गनी, पाज सरन स्वामी सुखागामी।

सदा तृप्ति हर नाम पूजन खाया गुण निदान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ति हर नाम पूजन खाया।

पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़िय साच, पूर रहे हो सर्वतर मैं।

आपदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई, सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं, सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं, मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़ै थाए, नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए, पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार, हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार, बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार, प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जस है जन्म हार, सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है, खंडन कल कलिश है प्रभ सिमर नानक नह दूर नह, हब रंग मान है जिस संग तैस्यों लाइय नेहो, सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर

विष्टा क्रम है मुच अडंबर हब के हो मांज महब्बत नेह सो साई जै विसरे नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध।

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना किसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया।

त्रोह पौड़ी सुपने से ती चेता मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया हार जा गई विहाई

का बसंत स्वर्ग लोक का है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, विसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाव, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाओ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेख सच कर जानिया, काम क्रोध अहंकार फिरह देवानिया, सिर लगा जम डांड ता पछतानिया, बिन पूरे गुरुदेव फिरह शैतानिया, सलोक राज कपटंग रूप कपटंग, धन कपटंग कुल गर्भ तह, संचंत बिखिया सलंग छिदनंग, नानक बिन हर संग ना चालते, ते खंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना, अड ना लहंदड़ो मुल, नानक साथ ना जुली माया पौड़ी, जलदिया नाल ना चले सो क्यों संजी है, तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजी है, हर बिसरिया क्यों त्रिपतावे ना मन रंजी है, प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजी है, हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजी है, सलोक नाच राज सुख मिष्टं, नाच भोग रस मिष्टं, नाच मिष्टं सुख माया मिष्टं, साध संग हर नानक दास मिष्टं, प्रभ दर्शन लगड़ा सो नेहो, मन मजाहु रत्या विदड़ो सच थोक, नानक मिठड़ा सो तनी पौड़ी, हर बिन कछु ना लागई, भगतन को मीठा आन स्वाद सब फीकिया, कर निर्णौ डीठा अज्ञान भरम दुख कटिया, गुर भये बसीठा चरण कमल मन बेदिया, ज्यो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु, बिनसे सब झूठा सलोक, त्यकत जलं नह जीव मीन, नह त्याग चातरक मेघ मंडल है, बाण बेदंच क्रंक नादं अल बंधन कुसुम बासन है, चरण कमल रचंत संत है, नानक आन नार

सदा हजूरीय सलोक रसना उचरंत नाम सर्वण सनंत शब्द अमृत है नानक तिन सत बलिहारन जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है हब कूड़ा वे कम इकस साई बाहरे नानक से धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा संतां संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी अदोत करन हर रमण संजोग पूर्ण है गोपाल दर्श भेटन।

जित मलंदड़ो महापीरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूरत भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप।

प्रसाद। राग टोडी महला चौथा घर पहला, हर बिन रह ना सकै मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर ना भवजन फेरा रहाउ। मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी, हर नैन हो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ आया,

आग संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तोहारी रहाउ बिन सिमरन जो जी

चित्त तैसी बुद्ध करहो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो जो तू देहे तही एहो तृप्तै आन न कतहु तावो सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहुविध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सू

ठाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन भीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देख लोक सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गली सहल उठावत चाहे वे ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रब राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा।

शरण परे दुख पंजन जा का बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी शरण परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारी रहाउ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाइए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

तरिया टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाउ बड़े भाग गुरे अपना पायु गुरमोह को हर नाम दृढ़ायु हर हर जाप ताप व्रत नीमा हर हर त्याई।

सब किस किस के ग्रह मह आया टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद रूढ़ो मन हर

पायोरे महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ियो नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिखियाते

मोहे हर रंग पीन पेखियो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हरखे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

जप एहि राम नाम निर्मल है रीत रहाउ प्राण आधार जीवन धन मोरै देखन को दर्शन प्रभ नीत बात घाट तुसा संग मोरै मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भये मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खूब हो भरम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरा अमृत दृष्ट धारुह प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे।

सदा हजूर जो तुमरा जस गावह करते से जन कभो ना मरते चूर धंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर।

नाम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पये।

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ, गुण गावत अचुत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवां, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपुरा भेट्यो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काढ लियो जाने अपना, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण।

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाव कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हम

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमहाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बक बाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई। एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै। पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसै। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

हिंस तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर पव जल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शिडावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाइय हर जप नानक नाम आधारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याई

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हेच ना दानी रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअप्तम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

कीता तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए। रहाउ केसर कुसुम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता जोत अनेही। सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई। तेरे नाम निवे रहे लिव लाई, नानक तिन दर भीख्या पाई। तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इहो तन माया पाहिया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई

तू है तू होनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुद सेव है तिन पहो दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाही, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए, जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत।

आपे हार एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस पावे नानका, साई गल चंगी, तलंग महला नौवां काफी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चेतना है तू चेत ले, निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट

तेह भजन ते निर्भय पद पावे तलंग महला नौवां जाग ले हो रे मना जाग ले कहां गाफल सोया जो तन उपजिया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जां स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो।

संपत रथ धन राज सिंह अतने हो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर ना जाए टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए ए जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना ही रहाओ दरोग पड़ पड़ खुशी हुए बेखबर बाद बकाए हक सच खालक खलक मियानी स्याम मूरत नाए असमान मियानी लिहंग दरिया गुसल

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जित सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

आदि योग ना खिंथा योग ना डंडे योग ना पसम चढ़ाई है योग ना मुंदी मूंड मडाए योग ना सिंगी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है योग जोगत इव पाई है गली योग ना हुई एक दृष्ट कर सम सर जाने।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेट है।

पाइय भंजन माहे निरंजन रहिय जोग जुगत एव पाइय नानक जीवत आमर रहिय ऐसा जोग कमाइय वाजे बाज हो सिंही वाजे तौ निरभउ पद पाइय अंजन माहे निरंजन रहिय जोग जुगत तौ पाइय सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप भला।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ, सत संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मेलो सत संगत, हम तो वह पग जन के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के, सुई महला चौथा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी, हर अस्तर सेव सुख समगा, मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे, सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ, नरपत राजे रंग रस माण है, बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरमत मारी, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा, तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विट्टो सद घूमगा।

हर हर कर है नित कपट कमाव है, हृदय शुद्ध ना हुई, अन दिन कर्म कर है बहुतेरे, सुपने सुख ना हुई, ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा, मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना, दूजे पाए खुआई।

किसन उतरिया घर जिस जाय, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाय रहाउ। रविदास चमार पुस्तक करे, हर कीरत निमख एक गाय, पतत जात उत्तम भया, चार वर्ण पए पागे आय। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शीपा कह बलाय, खतरी ब्राह्मण पेठ दे छोडे, हर नाम दे लिया मुख लाय। जितने भगत हर सेवका, मुख अठ सत तीरथ तिन तिलक कढ़ाय, जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा, तिनी अंतर हर अराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा, तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाउ। तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे, किस हलत पलत।

पवै शारा, जिस घर विरती सोई जाने, जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूही महला चौथा, जिथे हर आराधी है, तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया न जाई। हर तन संचियै पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। सत संगती संग हर तन खटियै, होरत है होरत उपाय, हर तन कितै ना पाई। हर रतन का वापारिया, हर रतन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये। वाक हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जवे हर मानक। हर तन नाल अमृत वेले वत्ते, हर भगती हर लिव लाई। हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हलत पलत हर तन की, भगतां को मिली वड्याई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा, इहो हर तन अग्नि तस्कर है, पानी है जमदूत है, किसे का गवाया ना जाई। हर तन को उचक्का नेड़ ना आवी, जम जा गाती डंड ना लगाई। साखती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिना एक विख नाल ना जाई। हलते विच साकत दहेले पए, हथों छुड़क गया अगे पलत साकत, हर दरगाह ढोई ना पाई। इस हर तन का साहु हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर तन लद चलाई। इस

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए, सो हर गुणा रवे, सो भगत सो परवान, तिसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान, गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ, सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है, जिसके पाइए परम निदान, जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे, सो निह

अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाए मेरे राम हर जन अरोग भये।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै, इकना सतगुर मेल तू बुझावै, इक मनमुख करह से रोवै, हर की वडियाई हौ आख ना साका।

मैं मलत हुई कहो नानक मेरी परम गत होई सूही महला पंजवा कीता लोड़ है सो प्रभ होई तुझ बिन दूजा नाही कोई जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी सरन पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पतियारै कछु ना पाइयै साच लगै तां हउमै जाइयै जिसनो लाए लए सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम त्याए दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे तां आणै रास कर कृपा अपनी भगती लाई जन नानक प्रभ सदा त्याए सूही महला पंजवां तन सुहागन जो प्रभु।

आवै सास सुहागण अंक समावै गर्भ गहेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहण बिहावै कर्महीन।

पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाऊ सत श्रृंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंतरी जाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया।

जन नानक पिर धन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई प्रम प्रम आयो तो नदर ना पाई किन बिद ही अरो तीर निमानो मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता।

सी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले चागी, खिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह फिर है पाई।

पिंड सब थारी लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन कहो हम बारी रहाओ प्रभ दाता मोहे दीन पेखारी।

पाता, मन नहीं प्रीत कह मुख राता, कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजै, कुचल कठोर कामी मुक्त कीजै, दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुखदाते पुरख सुभाई, रहाउ दूजा सूही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझै ना आना, माया मोह रंग लपटाना रहाउ, लोभ लहर को बिगस फूल।

देखते अंधे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मुहे साध संग दीजै तो किश पाइय जो होइय रेना जिसे बुझाए।

देह मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिय नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किस कार जित छुटह परानी हर हर नाम जप अमृत बानी।

पंजवां जीवत मरे बुझे प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिया मिल साधु हर नाम उच्चरिया रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाने काट काट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किस करे सोई पाल माने आद अंत की कीमत जाने कहो नानक तिस जन बलिहारी जा कै हिरदय वसह मरारी सूही महला पंजवा गुर परमेश्वर करने हार सगल सिष्ट कौ दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढ़े जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवे शांत सतगुर की रेण वड भागी पावे नानक गुर को सद बल जावे सूही महला पंजवा गुरे अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गाइए सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत साची पूरन निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही जन्म जन्म के किन विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवा दर्शन।

तन तूर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभ चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाए लियो जाने अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिनसे गुरपूरे मिल पाप तजायन रहाउ। जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए।

महला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस

गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुण गाए कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराए रहाओ हनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाए पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताए नगन फिरत रंग एक कै ओहो सोभा पाई पाट पटंबर बिरथिया जेह रच लोभाए सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराए।

सुखी ताकै पाछै जाऊ छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊ करहो कृपा करनापति तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

रहाउ निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहोर ना फिर।

सरनी आया, पुरुष आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी, मार्ग गुरह पठाया रहाऊ, महादुत्तर माया, जैसे पवन चलाया, सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया, गृह अंध को पाया, पावक सगराया, गही ओट सधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया, राग सूही महा

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई

जित तुद त्याई निर्मल हुआ देहा मेरे राम हौ सो थान पालने आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन पेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूट है संतो हो सागर पार उतरी है जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिय रहा कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रिय साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना हुई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह।

जल थल महियल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवै, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवै, तिन हर सिउ आण मिलावै, माया मोह परम पहु काटै, संत सरण जो आवै, जेहा मनोरथ कर आराधी, सो संतन ते पावै, जन की महिमा केतक बरनौ जो

एक परवासा तुम्हारा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नजर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कसना सी।

आऊ, चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा।

स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेट कोई सतगुर का दिलासा नाम त्याइन सुख फल पाइन आठ पैर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म न।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंत पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतराई

सच्चे की लिव उबरै, बक्षे बक्षण हार जियो, अनको की जय मितड़ा, खाक रल मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया,

दसै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझहर जाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखह आप देहे सो पाई है तू देख है थाप पथाप दर बेनाई है देही होवग खाक पमन उड़ाई है एहो कित्थे कर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंध कोर कब महाई है गर्भ मुसे घर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे निह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है जो राखह कृपा धार तिवै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद भावै तिवै रजाए भरम पौ भंजना जन्म

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

तुझे अराधी दुख पी तुझे त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि

धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड़ है पीत आई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ ना जाई जे तुद वाल रहे ता कोई किह आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीहू वरसे पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुए बहु खारा गुर सिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसे त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक का हुई सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाई होर निफल सब चतुरा।

पाई। जे गुर झिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले है सो थाए पाए, मनमुख किस थाए ना पाई। पाला ककर वर्फ वरसै, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक अपाव करी गुर कारण, गुर भावै सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करहो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्ति अघाई। नानक का प्रभ पूर रहियो है, जत कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदिया घर दसवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने। तन मन हुए निहाल, जा गुर देखा सामने।

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए, जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए। अका

सतगुर मीत मलाया मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब मैं रहया समाय। राम नाम धन संचया साबत पूंजी रास नानक दरगाह मन्या गुरपुरे साबास। राग सूही अष्टपदिया महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उर्ज रहयो बिख्या कै संगा मनह व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाईए पूर्ण परमेश्वर रहाउ। मोह मगन में रहया व्यापे अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे।

आद मध अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन जिथिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन

ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसर सो मर जमै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा, जिन मन बुठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वर है, बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार, तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय, तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर दसवां काफी।

दातड़ी नित हृदय रखा संभाल पाव जलाई पंध तौ नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुर जीवै कृपाल कित्ती लख करोड़ प्रिये रोम ना पुजन तेरिया तू साही हूं साह हो कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो आप वधानिया एक भोरी नदर निहाल देह दर्स रंग माणिया जय जिथे मन धीरी है किल विख मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे होए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख न पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया धंधिया सोदत सोदत सोद तत बीचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाहि अनेक मर मर जन्म ते बिन बूजे सब वाद जोनी भरम ते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे विसरना ही दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मा वन डोसड़े।

जियो, तू सहु अगम अतोलवा, हौ कह कह कह पयास जियो, क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन भूख।

मलाए जियो सोई दस पदेसड़ा मेरा मन अनक ना काहू जाए जियो एहो मन तै कूडे वसा मैं मार्ग देहो बता।

चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

सुहाय कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

मेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाई नानक साजन को बल जाइए साच मिले घर आई घर आए अड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जहां रावी रंग रात अवगुण मार गुणी घर छाया पूरे पुरख बधाते तस्कर मार बसी पंचायन अदल करे विचारी नानक राम नाम ने सतारा गुरमत मिलह प्यारे वर पायाड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाईए नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाईए फिर उचड़िए माडड़िए तेहो लोआ सिर ताजा राम हों बिसम भई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनास्ती।

झूणे ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुरमहली घर अपने सो भरपुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला पा जंत अनहद बीना।

आप अपुल ना भुले जय जयकार करह तुद भाव है गुर कै शब्द अमुल्य हीनो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवै मत साई राग सूई संत महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहिलड़ा हर त्यावहु गुरमुख हर फल पावहु गुरमुख फल पावहु हर नाम त्यावहु जन्म जन्म के दुख निवारी बलिहारी गुरे अपने विटोहु जिन कार्य सब सवारी हर प्रभ कृपा करे हर जापहु सुख फल हर जन पावहु नानक कह सुनो जन भाई सुख सोहिलड़ा हर त्यावहु सुन हर गुण पीने सहज सुपाई गुरमत सहजे नाम त्याय जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पहु भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी तिन अन दिन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुपाय जुग मह राम नाम निस्तारा गुर ते उपजै शब्द विचारा गुर

हमारा, जुग मह राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे घर माही, हर गुण गावे है तृप्त अगाही, हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए, दह दिस पूज होए हर जन की, जो हर हर नाम त्याए, नानक

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंतै रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझै कोई। हों मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे, शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती, अपना साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, रव रहिया प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए, सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई। हर सुख दाता।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल होमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

शब्द रवहु अनदिन शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए हर गुण गावह नारी अनदिन भगत करह गुर आगै सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसया घट अंतर से जन शब्द सुहाई नानक तिन घर सद ही सोहिला हर कर किरपा घर आई भगता मन आनंद भया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर

जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाई संत संगत सियो मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन घर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए, अनदिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गवाए, गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जां प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

परम गत पाई पंच मेले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाथी पाखंड भरम गवाया हों मैं पीर गई सुख पाया अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे विन सतगुर मग ना पाया उजड़ पंथ भ्रमे गावारी खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता सतगुर पुरख मलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो पत्ती वाचाई मन बजी वधाई जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर सद नवतन बाल सिखाई नानक।

वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

स्वामी सर्वरहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बड़ भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजै मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया।

हर पाया प्रभ अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूई संत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुपाए अन दिन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रह लिवलाए वड्डे भाग गुरपूरा पाईए अन दिन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए भये पवित शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा हम मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाई नानक नाम परगासा अंतर रतन बीचारी गुरमुख नाम प्यारी हर नाम प्यारी शब्द निसतारी अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प शिंगार बनाई हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

ਆਈ ਅਪੂਰਬ ਜਾਨੀ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਚਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਈ।

संत जन हो गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लय मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हों मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया। बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

राम। सतगुर पाए चलो जीवत्या इव मरिया राम। जीवत्या मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावै। पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिवलावै। मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई। नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। हो मन तन देवा सतगुर है मैं मेले प्रभ गुणतासे। तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे। वड भागी हर पाया जन नानक नाम वगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा। कर आव हो चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा। हाँ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा। वड भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा। मन दह दिस चल चल भरमिया मन मुख भरम भुलाया। नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भुख लगाया। अनता धन धर दबिया फिर बिख पालन गया। जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया। गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत वसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया। वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया। सूही संत महला चौथा मारे हिस्वे जन हूं मैं बिखिया। जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वन्निया। इन हूं मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा। इन मन

गर्भ गवानू निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिय भौजल तरिय जे थीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानू नानक शरण पया हर।

रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपुरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान मान महत।

नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हौ ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी बछुनिया मन शांत आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया सदा भज जगदीसरै राग सूही संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठाक

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना। प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला। कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे। अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे। ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण। सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सद कुर्बाना। ऐसा

हम परम पद पाया आप मटाया, हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ भागा, हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया, ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए, मिल सतगुर सुख पाया, गाओ मंगलो नित हर जनो।

मेरे प्यारे, मुख हर अरादे मेरा राम, हर अरादे जम पंथ साधे, दुख ना व्यापै कोई, जल थल मही अलपूर।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल होए कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी।

वाजे पार ब्रह्म मन बूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिनसे भ्रम भय झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करिया कर्म है नवनिध भरे भंडारा।

जिन तारिया सूही महला पंजवा तै सागरो भै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोहि थड़ा हर चरण अरादे मिल सतगुर पार लंघाए राम गुर शब्दी तरिया बहुड़ ना मरिये चूके आवन जाना जो किश करे सोई भल मानो ता मन सहज समाना दुख ना भूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरनी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आपनड़ा मन आगे धरिया सरबस ठाकुर दीने राम करे अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई अनद बनोद सिमरो प्रभ साचा विछड़ कबहू ना जाई सावड भागन सदा सुहागन राम नाम गुण चीने कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महारस पीने अनद बनोद भये नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आपनड़ै प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम सहज सुभाए भये कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उर धारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारी कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारी गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार त्याए राम जप एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए पेख दर्शन नानक बिगसे आप लय मलाए सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सोहाया कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अरादह कटिए जम की फासी राम काटी जम फासी प्रभ अवनासी हर हर नाम त्याए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नासी शब्द सवारी सतगुर पूरे नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम आद जगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रित पाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पाव पंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ट नित होवे हर नाम अराद है मैल सब काट है किलविक सगले खोवे है तह जन्म ना मरना आवन जाना बहुड़ ना पाई है जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस पर

ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़ आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अठ सत तीरथ पुन किरिया महानिर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

ज्ञान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ

मानै औगण को ना चितारी। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्नै काली। घट घट वासी सर्ब नवासी, नेरै ही ते नेरा। नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा। हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा। मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा। प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जे वड़े अवर ना कोई। आदि अंत मद प्रभ रविया, जल कल मही अल सोई। चरण कमल जप सागर तरिया, पवज

प्राण आधार, गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु, मिल साधु दीना ता नाम लीना, जन्म मरण दुख नाथे, सहज सुख आनंद कनेरे, हौ मैं बिनठी गाठे, सब कै मद सब हूं ते बाहर, राग दुख ते न्यारू, नानक दास गोविंद सरनाई, हर प्रीतम मने सधारू, मैं खोजत खोजत जी, हर निश्चल सो कर पाया, सब आत्रुव डिथे जीओ, तां चरण कमल चित लाया, प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी, मरै न आवै जाए, धर्म अर्थ काम सब पूरन, मन चिंदी इच्छ पुजाए, श्रुत सिमरत गुण गावह करते, सिद्ध साधक मुन जन त्याया, नानक सरन कृपा निज स्वामी, वडभागी हर हर गाया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वार सूही की सलोका नाल महला तीजा, सलोक महला तीजा, सूहै वेस दुहागणी, पर पिर रावण जाए, पिर छोड़िया घर अपने, मोही दूजे पाए, मिठा करके खाया, बहु साधु वध्या रोग, शुद्ध पतार हर छोड़िया, फिर लगा जाए विजोग, गुरमुख होवै सो पलटिया, हर राती साज शिंगार, सहज सच पिर रावया, हर नामा उर धार, आज्ञाकारी सदा सुहागण, आप मेली करतार, नानक पिर पाया हर साचा, सदा सुहागण नार, महला तीजा, सूहविये निमाणिये, सो सहो सदा समाल, नानक जन्म सवार है अपना, कुल पी छुट्टी नाल पौड़ी, आपे तख्त रचायुन, आकाश पताला, हुक्मे धरती साजियन, सच्ची धर्मशाला, आप

फिर मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने जित।

लाल हुआ रसना रती गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार नानक करमी महल पाया।

मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हउ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मढ़िया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन।

0: नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी।
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिन की ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझ सी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन पिर मन मानिया तो बनिया शिंगार किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग स्यों हो मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर।

सो पुरख सजान गुर प्रसादी सेविया सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

निशान नानक नाम लाहा परवान घर आए बजी वधाई सच नाम की मिली वडियाई महला पहला राती होवन कालिया सोपेदा सेवन देहु बग्गा तपै घना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कबह ना पावह मान पौड़ी काया कोटर चाहया हर सच्चै आपे एक दूजे भाए खुआयन होमै विच व्यापे यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल।

पी जाई, पवर गए बग बैठे आए रहाव, काकै करवै रह ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा, काग उड़ावत पुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी, सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया रहाव, करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती, किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले, सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया।

पटवारी ऊपर पुजा कर मैं गुर पह पुकारिया तिन्हो लिया उभारी रहाओ नौ डांडी दस मुनसफ धाव है रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापह नाही बहु बिस्टाला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम ना काई संता कहो मत कोई निंदो हो।

तह की सार सुहागण जान, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जान पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पख हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कहर वदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाउ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब घट भीतर हाट चलावे।

ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किश हुआ सब किश तुझते, तेरी सब असनाई। तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

रहाउ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी। जल थल मही अल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासी।

अलख अपेओ रहाओ माया मोह तरकटी नार पूंडी कामन कामन यार राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधियार

हे जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाणी से मन मुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वस्से मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब मह एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाए अन दिन लागे सहज ध्याना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभमाना जब अपनी जोत खिंच

रहाउ। माया ग्रस्त भ्रमत है प्राणी, रख ले वह जन अपना। ज्यों प्रहलाद हरनाकस ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है, हर की ये पतत पवन्ना। ओह टो है टोर हाथ चम चमरे, हर उदरियो परियो सरना। रव दीन दयाल भगत भावतारन, हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना। बलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति। शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले वह मेरे ठाकुर। हम पात्र हीन अकर्मा, मेरे मन भज राम नामै रामा। गुरमत हर रस पाईऐ, होर त्यागो हो निफल कामा रहाउ। हर जन सेवक से हर तारी, हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर, हर जपिया वड्डे कर्मा। नाम हीन त्रिग जीवते, तिन वड दूख सहमा। ओए फिर जोन पवाई है, मंद भागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है, तुर पूर्व लिखे वड कर्मा। गुर सत गुर नाम दरड़ाया, जन नानक सफल जनम्मा। बलावल महला चौथा, हमरा चित लुभत मोहे बिखिया। बहु दुर्मत मैल परा, तुमरी सेवा करना सकह प्रभ हम। क्यों कर मुग्ध तरा, मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा। जन ऊपर कृपा प्रवतारी, मिल सतगुर पार परा रहाउ। हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी, हर देहो मत्ती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे, ज्यों संग काष्ट लोहो तरा। साकत नर होछी मत मद्दम, जिन हर हर सेव ना करा। ते नर भागहीन दोहचारी, होए जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलोह स्वामी, ते नाए संतोख गुर सरा। दुर्मत मैल गई हर भजिया, जन नानक पार परा। बलावल महला चौथा, आवहु संत मिलहु मेरे भाई। मिल हर हर कथा करहु, हर हर नाम बोहित है कल युग। खेवट गुर शब्द तरहु, मेरे मन हर गुण हर उच्चरहु। मस्तक लिखत लिखे गुण गाय, मिल संगत पार परहु रहाउ। काया नगर मह राम रासी उत्तम, क्यों पाईऐ उपदेश जन करहु। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिले अमृत हर रस पीयो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संत हो चाख देखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिख रसो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेव हो संत जन हो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजो। बलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वैस। को जापै हर मंत्र जपैनी, गुर सत गुर पार ब्रह्म कर पूजो। नित सेव हो दिन सब रैनी, हर जन देखो सत गुर नैनी। जो इच्छो हो सोई फल पाव हो, हर बोलो हो गुरमत बैनी रहाओ। अनक उपाव चित भी है बहु तेरे, साहु है जे बात हुएनी। अपना भला सब कोई बांचे, सो करे जे मेरे चेतना चेतैनी। मन की मत त्याग हो हर जन, एहा बात कठैनी। अन दिन हर हर नाम त्याग हो, गुर सत गुर की मत लैनी। मत समत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जंतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिये बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन किलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम पचे दीपक देख पतंगा। सगल शिंगार करे नहीं पावे, जहाँ हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़ता देख पई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरुदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय। रहाव सबनी थाई रव्या आप, आद जगाद जाका वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघन हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जितै कितै दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बिलावल महला पंजवा। सुख नदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण

सिमरत नस्सी जां कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, बिसरत नाम होत तन शार। प्रभ चित आई पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै घर सदा आनंद। राग

गुर पूरा वडभागी पाई मिल साधु हर नाम ते आई है पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना किलविख काटे पज गुर के चरना रहाउ अवर कर्म सब लोका चार मिल साधु संग हुए उदार सिमरत

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल। रहाव तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे, रहाव सगल सरंजाम करे प्रभ आपी। भय मनोरथ सो प्रभ जापी, अर्थ धर्म काम मोख का दाता। पूरी भई सिमर सिमर बेधाता, साध संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुर आणिया, बिलावल महला पंजवा। सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव, हर हर नाम जपत नर जीवे। मर खवार साख नर थीवे, राम नाम हुआ रखवारा। चख मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचह कनेरे। मृतक फास गले सिर पैरे, कहो नानक जपह जन नाम। ताके निकट न आवे जाम, राग बुलावल महला पंजवा। कर चौथा दुपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संयोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो, रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। हर नानक बिसर न काहू बेरे, बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय त्याय, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटे दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान। रहाव अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, रहाव ताप पाप संताप बनासे। हर सिमरत किल विख सब नासे, आनंद करहु मिल सुंदर नारी। गुर नानक मेरी पैज सुवारी, बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रोह मद माता, बंधन बांधिया अत बिकराल। दिन दिन सिजत बकार करत औद, फाही फाता जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा बिखम सागर अत भारी। उधरहु साधु संगर वाला, रहाव प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी। जियो पिंड सब तुमरा माल, भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर। नानक के प्रभ सदा कृपाल, बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिरद सम्हारिया। साध जना हुए कृपाला, बिगसे सब परवारिया। कारज सतगुर आप सुवारिया, वड्डी आर जा हर गोबिंद की। सुख मंगल कल्याण बिचारिया, रहाव वण तिण त्रे भवन हरिया। होए सगले जी साधारिया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूर्ण इच्छ पुजारिया, बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत काटे सो काल। रहाव साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल। आपे सतगुर आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल। बलावल महला पंजवां। मन मैं सिंचहो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बलावल महला पंजवां। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम हृदय माहि त्याई। नानक गुरपुरे।

मारे करतार। नानक दास ताकी सरनाई, जा को शब्द अखंड अपार। बलावल महला पंजवा, ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग। पार ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग रहाउ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन अरोग। गुण गावु नित राम के, एह अवखद जोग। आए बसोह घर देश मह, एह भले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे, लह गए बियोग। बलावल महला पंजवा, काहू संग ना चाल ही माया जंजाल। ऊठ सधारे शतरपथ, संतन कै ख्याल रहाउ। हम बुद्ध को बिनसना, एह तुर की ताल। बहु जोनी जन्मह मरह, बिख्या बिकराल। सत बचन साधु कह, नित जपह गोपाल। सिमर सिमर नानक तरे, हर के रंग लाल। बलावल महला पंजवा, सहज समाद आनंद सुख। पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ। अमृत गुण चीन रहाउ। जय जय कार जगतर मह, लोचह सब जिया। सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु, कछ बिघन ना थिया। जा का अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। सदा सदा वडियाईया, नानक गुर पास। राग बलावल महला पंजवा, घर पंजवा चौपदी। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया। ज्यों बालू घर बार, बिन सतबार ना लाग गई। ज्यों कागद बूंदार, सुन मेरी मनसा मने माहे। सत देख बीचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी। ताज गए घर बार रहाउ, जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार। दृष्ट मान सब बिनसी है, क्या लग है गावार। कहां सो भाई मीत है, देख नैन पसार। एक चाले एक चाल सह, सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया, से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है, राख पैज मरार। बलावल महला पंजवा, लोकन किया वड़ियाईया। बैसंतर पागों, ज्यो मिले प्यारा अपना। ते बोल करागो, जो प्रभ जियो दयाल हुए। तो भगती लागो, लपट रहे मन बासना। गुर मिल एह त्यागो रहाउ, करो बेनती अत घणी। एहो जियो हमागो, अर्थ आन सब वारिया। प्रिय निमक सुहागो, पंच संग गुरते छुटे। दुख अर रागो, हृदय परगास प्रगट भया। निसबासर जागो, सरल सुहागन आया। जिस मस्तक भागो, कहो नानक किन पाया। तन मन सीत लागो। बलावल महला पंजवा, लाल रंग तिस को लगा। जिसके वड भागा, मैला कदे ना होवई। नह लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाईया। मिलिया सुख पाए, सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जानै जिन चाखिया, हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए, क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की, नानक कुर्बानी, बलावल महला पंजवा, राखो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारे, मान करो तुदे उपरे, मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे, रहाओ हम अवगन करहें असंख नीत, तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग, हे कर्म हमारे, तुम देव हो सब किश दया तार, हम अकिर्त कनारे, लाग परे तेरे दान स्यों, नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं, भव काटन हारे, कहो नानक सरन दयाल गुर, लेहो मुगद उधारे, बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए, प्रभ अपना त्याइए, जित सेवै सुख होए कना, मन सोई गाइए, कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी, सब अवगुण हमा रहाओ, ज्यों तुम राखो हो त्यों रहा, अवर नहीं चारा, नी धरिया धर तेरिया, एक नाम आधारा, जो तुम करहो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समगरी तेरिया, सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा, जे ठाकुर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै, बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बुझै, बाद साध अहंकार मह, मरना नहीं सूझै, सतगुर से वो अपना, काहे फिर हो अपागे, देख कसुम्बा रंगुला, काहे भूल लागे, रहाओ, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कहताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किया श्रम करे, ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेन सोई हुआ, जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना, बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर्ब कीता, अंधले त्रे पवन सूजिया, गुर पेट पनीता, महमा साधु संग की, सुनहो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल पये चीता रहाओ, ऐसी भगत गोविंद की, कीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो, तिस अपै दान दीता, सिंह बलाई होए गयो, त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को, ते गनी तनीता,

सर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाओ। जगत उदारन साध प्रभ इन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल। उकत सियान पकश नहीं नाही कश काल।

साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै हर हर हर हर जापियै अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपुरा जिस पेटिया ता कै सुख परवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबो ना विसरै प्रभ परमानंद बलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय परमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत त्रिपतासिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पके जमकाल ग्रसिए रहाउ संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगै बेनती रव्या सब थाई कथा पुरातन इउं सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जां कै कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी

नानक तरिया साध संग हर हर गुण गाओ। बलावल महला पंजवा। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड। सिमर है नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाय महामीत, तिस स्यो तेरा भेद। बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन सरनागति, जिन मन वस कीना। तन तन सरबस अपना, प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया, सिमरत सुख सार। जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत, हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म अराधते, मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे, सब कै मन लोच। पर उपकार नित चितवते, नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन, जह जपिय नाम। कथा कीर्तन हर अत कन।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण पई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

आए भगतन की रास तोट ना आवे कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन न दिसे संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसे जय जयकार सबे करहे सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिय होइए आरोग राम चंद की लष्कर का

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवां दुपदे घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप। राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागै। तंत मंत नह जो हुई

पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए।

आप रोग मटाए जिवालियन जां कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल धारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां।

दंडौत बंदना अनक बार जाऊ बारे रहाउ उठत बैठत सोवत जागत एहु मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करहो सोई भल हमरे एक नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रा

पूर रही दिनस अर रात रहाउ कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन पे जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवां राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे सरन सुख दाती।

घर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिन सेव अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पय जो पेखियो कहन ना जाए वडियाई मगन पय उहां संग माते पोत पोत लपटाई।

अपर अपारा एक बस तीरन एक संपूर्ण एक है प्राण अधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो।

गढ़ मह ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत ही पंच दूत मूंड पर ठाटे केस गहे फेरावत ही दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत ही जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यों फहावत ही कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत ही बिलावल महला पंजवां हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाऊ सहज समायो गुरह बतायु रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारू कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाउ पूर्ण पूर रहो संपूरन शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया किनको सगली सोज पई बलावल।

सिद्ध मुन इंदरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन ना जाई जह जह देखा तह रह समाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा अगम रूप अबनासी करता पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेटले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाओ सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बुलावल महला पंजवा मन क्या कहता हौ क्या कहता। जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता रहाऊ। अनबोले को तू ही पछान है जो जीन मह होता। रे मन काए कहां लो डह कहें जो पेखत ही संग सुनता। ऐसो जान भये मन आनंद आन ना बियो करता। कहो नानक गुर भये।

तुम पाई जो कालर भीत गिरी है रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है भलो देख दुख भरी है आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरिय निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया हर जन स्यों बाद उठरी है नानक का राखा आप प्रभ स्वामी क्या मानस बपरे करी है बलावल महला पंजवा ऐसे काहे भूल परे करह करावह मूकर पावह पेखत सुनत सदा संग हरे रहाव काच बेहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मह लपटाए जरे अंधकूप मह परे ओ प्राणी परम गबार मोह बंद परे कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर भेटै काढै बाहा परे बलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना पए आनंदा मिटे अंदेसे सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ ज्ञान पते सब पई स्या।

फल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहूं ना मान्यो मन शीना बलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ परताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ता

जरा मरा कछ दुख न व्यापै, आज्ञा दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुर ते पाईऐ एहो निदान। जन्म मरण की कटियै फासी, साची

हस्त प्रव दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचन पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन स गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास

आई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहया पर पूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझह चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बलावन महला पंजवा तन तन जोबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बकार निस भोर भया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया शरण परे नानक स्वामी की बाहा पकर प्रभ काढ लया बलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे झख मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहाओ गई ब्याद अपाद सब नासी अंगीकार कियो करतार शांत सुख अर आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को राखन हारा नानक दा

विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बलावल महला पंजवां दुपदी घर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा एक है निर्गुण उग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर थुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ धराओ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवां तुम समरथा कारण करन ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो ठौर नाही कस ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं किरपाल किरपा नित जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवां ऐसी कृपा मोहे करो संतह चरण हमारो माथा नैन दर्श तन धूर पर हो रहाओ गुरु को शब्द मिरही अरे बासे हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच नवार हो ठाकुर सगलो परमा होम जरो जो तुम करो सोई भल मानै पावन दुबदा दूर टरहो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरो बलावल महला पंजवां ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा तुमरो

जन चर राजमुख मात लागी आसा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवा ज्यो भावै त्यो मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच ना साको तुमरी काल तुमरी गात मित तुम ही जानो हो जियो पिंड सब तुमरो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जियो नजर निहाल बिलावल महला पंजवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लाथ निद निधान नानक हर सेवा अवर सियानप सगल अकाथ बिलावल महला पंजवा अपने सेव को कबो ना बसार हो उर लागो स्वामी प्रभ मेरे पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारो हमरे दुख हृदय मत धारो हो जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही हम मैं पटल कृपा कर जा रहो जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारू जन नानक प्यास चल

कुशल पया गुर पूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाउ मन तन रव रहे हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बड़ाई अचुत अभनासी नानक उचरै हर की जया बलाव महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अर चिंत बरानी साध है शरण पाए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए। कहो नानक गुर पूरा पेट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो पर

जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावै मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावै कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावै बलावल महला नौवां जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाउ तीर्थ करै व्रत फुन राखै नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानु साच कहत मैं जाको।

को दूजा देख कहों पावे मन सोए, नानक कह अवर नहीं कोई। बलावल महला पहला, मन का कहया मनसा करै, इहो मन पुन पाप उच्चरै। माया मद माते त्रिपत ना आवै, त्रिपत मुकत मन साचा पावै। तन तन कलत सब देख अभमाना,

आप न बूझे लोक बुझावे मन का अंधा अंध कमावे दर कर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेविया अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी इस नाल क्या चले पहनामी साचा नाम साचा शब्द जाने आपे आप मिले चूके अभमाने गुरमुख नाम सदा सदा बखाने सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सतगुर मिले वड्डी वड्याई।

गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बलावल महला चौथा अष्टपदिया घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप खाए हों मेटे, अन दिन हर रस गीत गवैया। गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह ना सको बिन नावे। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाउ, एक गिरहो दस द्वार है जाकी। अहनस तस्कर पांच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावे। मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहु मानक भरिया। जागे ज्ञान तत लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने। गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिता। खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जगाती नेड़ ना आवै। ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती। मैं हर जस कहते अंत ना लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवे। मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मन तृप्तै। श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने। रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे व्यापे। तुरिया गुण है गुरमुख लहिया, एक दृष्ट सब सम कर जाने। नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया, राम नाम है ज्योत सबाई। गुरमुख आपे लख लखैया, नानक दीन दयाल भए है। भगत पाए हर नाम समैया, बलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल त्यावहु, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया। जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, सरल परे से ही जन उबरे। ज्यों प्रहलाद उधार समैया रहाओ, पार अठारह मैं चंदन उत्तम। चंदन निकट सब चंदन हुईया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए। मन अभमान बिछड़ दूर गईया, हर गत मित करता आपे जाने। सब बिद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे। जो तुर लिखिया सो मिटै ना मटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे। सागर भगत पंडार खलैया, गुर चरणी एक शरदा उपजी। मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया, परम बैराग नित नित हर त्याए। मैं हर गुण कहते भावनी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिए। हर पार न पावे परे परैया, शास्त्र वेद पुराण पकार है। धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया, मनमुख पाखंड परम विगूते। लोभ लहर नाव भार बढ़ैया, नाम जपहो नामे गत पावहो। सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, हउमै जाए ता निर्मल होवै। गुरमुख परचै परम पद पैया, इहो जग वर्ण रूप सब तेरा। जित लावह से कर्म कमैया, नानक जंत बजाए वाजह। जित पावै तित राहि चलैया, बलावल महला चौथा। गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हों बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समैया। जान की टेक हर नाम टिकैया।

ज्यों महा खुदयारथ भोग ज्यों मात पूतहि हेत हर सिमर नानक नेत ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यों ग्र

रंग गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आवह क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पा खंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा

मुख शरीर सात समुंड भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाय सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाउ किसमें मनुआ रहे लिव लाए प्रणवत नानक काल न खाए नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा कट कट नाथ महाबल।

आत्म चीनै, पखंड राच तत नहीं बीनै, निर्मल निराहार ने केवल, सूचे साचे ना लागै मल, जह देखो तह एको एका, हुर जी अपाए वेको वेका, फलोहार किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागै कबह ना सूता, जागत जाग

0: वार वार
1: दिन सरहण तिवें संसार आवा गौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे सिष्ट साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सोजी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै।

तह काय परमे भूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे ता दर सूझै एक

कह कोई साहिब की सेवक रहे सरनाई आपे बख्शे दे वड्याई किसते ऊपर नाही कोई कौन डरे डर किसका हो।

वह मुग्ध ग्वार नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंदन वे लड़िया गोयल आई राम मटकी डार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर स्यों रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंदन वेल सुंदर देख फिर साधारिया।

आया नित हर हर जापै राम मेरे हर प्रभ भावै सो करै हर रंग हर रापै राम गन नानक सहज मलाया हर रस हर त्रापै राम मानस जन्म हर पाईऐ हर रावण वीरा राम गुरमुख मिल सोहागणी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वछल हर

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया पया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मिल संत आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखी सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लज्जाइय चरण राज मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मरण मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक

नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भणा मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक भयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा।

नानक प्रभ शरणागती जप अनत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम। बड़ भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस पिन्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जल

हरि उत्तम हर प्रभु गावेया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख थाए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है बिचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुगे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंद है ते ब्राह्मणा जे चल सतगुर पाई।

विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चेतलाय नानक जिन को नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाय। महला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द न लगो पाओ हम मैं रोग कमावना हत दीर्घ बहु सुआउ मन हट कर्म कमावनी फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लए मलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाए पौड़ी सब वडियाइया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई जे वस्त मंगिए साई पाईए जे नाम चित लाइए गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्ब सुख पाईए गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाइए जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाइए। सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रभ मेल मलाय सतगुर का दर्शन सफल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख होआ सच वस्या मन आए सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दह दिस पसरिया गुर कै सहज सुभाए नानक जिने अंदर सच है से जन शपहना किसे देश पाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाईए जां कहो नदर करे मानस ते देवते भए सच्ची भगत जिस दे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावै की वड्डी वडियाई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उन्ना अंदर हिरदै पाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन उन्ना पराया भला ना सुखाई क्या होवै किसे ही की चख मारी जां सच्चे स्यों बन आई जे गल करते पावै सा नित नित चढ़ै सवाई सब चख चख मरै।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान ना लागे। दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै। करमी सत गुर भेटियै, तां सच नाम लिव लागै। नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया। गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरहे गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार। भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हम मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार। दूजे पाए सूते कबहू ना जाग है, माया मोह प्यार। नाम ना चेतै है, शब्द ना विचार है, इह मनमुख का विचार। हर नाम ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन, सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा। होर तहट ना वथ ना विसाहु, भगत जना को सन्मुख होवै। सो हर रास लए वे मुख।

इस जोग में भगती हर धन खटिया होर सब जगत परम भलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अन दिन नाम त्याया बिख्या माही उदास है हम मैं शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरी धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हम मैं मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए किसे सरे वो प्राणी हो किस बिन अवर ना कोई गुरमुख अंतर मन वसे सदा सदा सुख होए पौड़ी जिन्नी गुरमुख हर नाम धन ना खट्यो से दवालिए जुग माहे ओए मंगदे फिर है सब जगत में कोई मुहे थुक ना तिनको पाए पराई बखीली करह अपनी प्रतीत खोवन सगवा भी आप लखाहे जिस धन कारण चुगली करह सो धन चुगली हाथ ना आवे ओए पावे तिथे जाहे गुरमुख सेवक पाए हर धन मिले तितों कर्महीन लै ना सकह होर थे देश संतर हर धन न

जे हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिन का आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी, अंतर निर्मल नाव। अन दिन जागे कदे ना सोए, सहजे अमृत पियाओ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर धन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवे, ता कोई किहो मंग लए। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर धन जोर कीतै किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए, तिस हर धन की वंड हाथ आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया, इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही, किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे, तिसका मुंह

का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियो सब जहान जे सतगुर नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे वेमुख होवे सो फिरे भ्रिष्ट थान जन नानक कै वल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए।

का अन्न पांच चोर तिना घर मोहन हों मैं अंदर सन साकत मुठे दुरमती हर रस ना जानन जिन्नी अमृत भरम लुटाया देख स्यो रचहर चन दुष्टा सीती पिरहड़ी जान स्यो वाद करन नानक साकत नरक मह जम बदे दुख सहन पै किरत कमाम दे जिव राख है तिवै रहन महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया ताणन ताने तिस सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस हिरदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस हर दासां का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभ वसै हम सद कुर्बान है तिस जिनको पूर्व लिखिया रास संत जना स्यो तिस पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया सोई वर्तिया जगत मह कट कट मुख भणिया बहुत वड्याईया साहिब है नह जाही गणिया सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यों बनिया।

आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ नाम मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लई।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

सुनहो देरानी, अचर्ज एक भयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, इह मुंडिया क्यों नाम होयो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी, सो गुर नाम दयो, संत प्रहलाद की पैज जिन राखी, हर नाखस नाख बिदरयो, घर के देव पितर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो।

भेख तारी, आसन पवन दूर कर बबरे, छोड़ कपट नित हर भज बबरे रहाउ। जेहे तू जाच है सोते पवन भोगी,

चरण कमल जा कर दे बस है, सो जन क्यों डोले देव, मानव सब सुख नौ निदता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाउ, तब एह मत जो सब मह पीत।

तू ही क्या उपमा दीजै बलावल जेहे कुल साध बैसनो होए बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईसर बिमल बास जानिए जग सोए रहाव ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाऊ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

ऐसी मेरै सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेविया नित त्याई है, जोखिन मैं किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हरि ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए, अवरा पह कह मन लाज मरासा। जो संसार के कटम मित्र भाई दीसह मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मलासा। जित दिन उनका सुहाओ होई ना आवै, तित दिन नेड़ को ना टुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा। इसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का आसा चा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल माने अपना। जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान। सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रतना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी। इनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो। ओहो उत्तम संत भयो बड बडना, किस जन की वड्याई हर आप वधाई। ओहो कटे ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक कहो हर दान एक दीजे, नित बसह हृदय हरि मोहे चरना। गोंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करै, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लई, मेरे मन हर जप हर नित पड़ै, हर बिन को मार जवाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़ै, रहाउ हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरै, हर एक को बोलै हर एक बुलावै, गुर पूरै हर एक दिखै, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरै, निह कपट सेवा कीजै हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पै, जिस दै वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा धियै, जन नानक सो हर नाल है तेरै, हर सदा ध्याए तू तुदले छड़ै, गोंड महला चौथा।

फिर बिछरे थिर संगत हर हर त्याए ले, जैसे मीन रसन साद बिनसियो ओह मूठो मूड लभाए ले। तू हो आ पंच वास वैरी कै छूट है पर सरनाए ले, हो कृपाल दीन दुख भंजन।

राग गोंड महला पंजवा चौपदे हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी मह जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही न जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कै परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमक जस गाओ बाल सिखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

मत को परम भुलै संसार, गुर बिन कोए न उतरस पार। रहाउ भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगती लाया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई। गुर प्रसाद ऊर्द कमल बिगास, अंधकार मह भया प्रगास। जिनकी आसो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। कहो नानक प्रभ एह जनाई, बिन गुर मुक्त न पाई है पाई। गोंड महला।

के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाय, पार ब्रह्म गुर रहया समाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है वड भागी।

तब ते निर्मल पूर्ण काम रहाउ। राम राम धन संच भंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम विसर न

अपना नित दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खोवे सात जना पग मल मल धोवे पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याई तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेतन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब होए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतर को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी कर कृपा।

भगत पाए हर कीर्तन करिए, जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गोण महला पंजवा, गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार, होए रही है सगल कीरीना। घट घट रमैया सब महचीना, इन बिद रमहु गोपाल गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को एह सुआओ। ताज अभमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर स्यो मन रंग। जिन तू किया तिस को जान, आगे दरगाह पावे मान। मन तन निर्मल होए निहाल, रसना नाम जपत गोपाल। कर कृपा मेरे दीन दयाला, साधु की मन मंगेर वाला। हो दयाल देहो प्रभ दान, नानक जप जीवै प्रभ नाम। गोंड महला पंजवा, धूप दीप सेवा गोपाल। अनक बार बंदन करतार, प्रभ की शरण गही सब त्याग। गुरसो प्रसन्न भये वड़ भाग, आठ पहर गाइए गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। हर गुण रमत भये आनंद, पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद। कर कृपा जन सेवा लाए, जन्म मरण दुख मेट मलाए। कर्म धर्म एह तत् ज्ञान, साध संग जपिए।

कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी सरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए करन कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा कीत मन तन की सब मिटे बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिए संसार वड भागी पाइए पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटहे उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

देव गुण महला पंजवा संत का लिया तर्क बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसे दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा किसका पतन होए जिस को राखे सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिस की रास नानक को उपजी प्रतीत मन मुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शिंद नारायण कीने

सादसंग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राखै राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है साध संग जपै निरंकार।

जाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कुनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

वाला, ना इस दुख नहीं जम जाला, ना एहो बिन सह ना एहो जाए, आद जगादी रहया समाए, ना इस उसन नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं इस सोग, सब किस इसका एहो करने जोग, ना इस बाप नहीं इस माया, एहो अपरंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लागे, घट घट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकत उपाया, महामाया ता की है छाया, अछल अछेद अभेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ता की गत मित कछु ना पाए, नानक ता कै बल बल जाए, गोंड महला पंजवां, संतन कै बलिहार जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किल विख सब गए, संत सरन वड भागी पए, राम जपत कछ बिघना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ, पार ब्रह्म जब हुए दयाल, साधु जन की करै रवाल, काम क्रोध

लागै चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदियां महा।

अमराव पतियाई दुष्ट अहंकारी मार पचाई निंदक कै मुख कीनो रोग जय जय कार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जप है गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पए सगल थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बे परवाहे सगल पै मिटे जाकी सरन निंदक मार पाए सब धरन।

पीतल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे रहाओ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़या आवत देखिया था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था रावण सेती सरभर होई घर की जोए गवाई थी हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाना हिंदू पूजै देहरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेविया जह देहरा नाम सीत राग गोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राण जप मुकंद मस्तक निशान सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल धन लादी एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जोग तार उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपा लीने कीट दास कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहू की गोंड जे हो अठ सठ तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करे निंद सब बिरथा जावे साधका निंदक कैसे तरे सर पर जान हो नरक ही परे रहाओ जे हो ग्रहण करे कुल खेत अर्पे नार शिंगार समेत सगले सिमरत सर्वनी सुने करे निंद कवने नहीं गुने जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे अपना बिगार बिराना सौंडे करे निंद बहुजोनी हांडे निंदा कहां करो संसारा निंदक का प्रगट पाहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सधारिया जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे त्याना अब ही कब ही किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गति हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी कर कृपा राखो।

सर्व ज्योत तेरी पसर रही, जह जह देखा तह नरहरी, जीवन तलब नवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाओ, जह पीतर घट पीतर बसिया, बाहर काहे नाही, तिनकी सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही, आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहया भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तह रहया समाए, अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेहगा प्राणी, राम कली महला पहला, जित दर वस है कवन दर कही है, दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरियै, जीवत्या नह मरियै रहाओ, दुख दरवाजा रोह रखवाला, आस अंदेसा दोए पट जड़ी, माया जल खाई पानी घर बांधिया, सत कै आसन पुरख रह, किंते नामा अंत ना जानिया, तुम सर नाही अवर हरे, ऊचा नहीं कहना मन मह रहना, आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही, क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह निरासा, तो नानक एक मिले, इन बिद सागर तरियै, जीवत्या इयों मरियै, रहाओ दूजा, राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी, बाजै लोक सुने, पत झोड़ी मंगण कै ताई, भीख्या नाम पड़े, बाबा गोरख जागै, गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार ना लागै रहाउ, पानी प्राण पवन बंद राखी, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधक अर जोगी जंगम, पीर पुरुष बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा, ता मन सेव करे, कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह, ऐसे भगत मिल है जन नानक, तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला, सुनमा शिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले, ऐसी जुगत जोग कौ पाले, आप तरह सगले कुल तारे, सो अवतूत ऐसी मत पावे, अहंस सुन समाध समावे, रहाउ, भिख्या पाए भगत पै चले, हुए सो तृप्त संतोख अमुले, ध्यान रूप हुए आसन पावे।

निराश बलाए निश्चो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आई निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाउ सिद्ध साधक जोगी अरजंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचे शब्द नबेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइए एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसे तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए।

कात बाद सिर राखों जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदियां ढिल ना लाईए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड पाग।

तित नवाइए राम मुको हर जन कार लाइए हौ पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाइए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाइए सतगुर जेवड़ अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याइए सतगुर सरन परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाइए एक अपने सवाई आए बह गुर आगे जो बगल समाध लगाइए बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखु मुख लाइए नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराइए राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग हैं गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक खिन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वद भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूजै बूजै मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है से न कटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम सुमारी राम गुर हर हर नाम कंठ तारी गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारी रहाओ कोट कोट ते तीस त्याव है ताका अंत ना पावे पारी हृदय काम कामनी मांग है हृद मांग है हाथ पसारी हर जासु जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारी जे वड भाग होवे ता जपिए हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राखे कंठ जन तारी नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवां घर पहला

सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

विद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाउ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को

भरपूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत ना आवस दूजी बातां सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन ना काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूं जाता बरन ना साकों जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाही।

तू सागर हम हंस तुम्हारी, तुम मेहमान कलाला, तुम देव हो तिन संक न मानू, हम पुंच है सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारी, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम सदगुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग अगाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन ना जाए।

बांसुरी बाजै जिहवा तुने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचै आनी घुंघर साजा राम को निरतकारी पेखै पेखन हार दयाला जेता साज शिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होवा पांच तत कर पुत्र।

दास पातो पंच संगीता एक है भीतर साथे भिन्न भिन्न हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत होए दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कोई बाछ पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवां पवन मह पवन समाया ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदाई परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध एहो तौ रचन रचिया कर।

जानन हारे कहो बल जाओ। कहो नानक गुर परम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आन ना दिसै कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे।

तन मनसी तले अग्न निवारी अनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर किरपा ते नीच निवाजिया फूल कुवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर।

सर्व प्रतिपाल नानक रातो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा मुखते पड़ता टीका सहत हृदय राम नहीं पूर्ण रहत अपदेश करे कर लोक दरडावे अपना कहया आपना कमावे पंड

अनक पापता के पानी हार, जां को मया पई करतार, जिसा सहाई होए भगवान, अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ, करता राख कीता कौन, कीरी जी तो सगला भवन, बेअंत महमा ता की केतक वर्ण, बल बल जाइए ता के चरण, तिन्ही किया जप तप ध्यान।

था घट घट रमैया तिन ही दीठा राम कली महला पंजवां पंच शब्द तह पूरन नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद केल करह संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस।

कर कर थाके बड़े बडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपै जन कोए ताकि आसा पूरन होए हर भगतन को।

त्याग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावै जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संतोख।

सो भूखार है, इस संग राचे सो कशु नाल है, इस त्याग सत संगत करे, वड भागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभ।

कह डोरा, कोट परगास ना दिसे अंधेरा, पशु परीत कास संग रचे, जिस नहीं बुझावे सो कित बिद बुझे, जानन हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान, बिगस बिगस

पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाउ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपट्यो भ्रम गिरह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां।

सगल अपावना चालह संग भवजल तरिय प्रभ कै रंग देही धोए न उतरे मैल हों मैं व्यापै दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए तां का रोग सगल मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कभो न बिसर गोपाल तेरे दास की होवा तूर नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली महला पंजवां तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह राचै हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै।

पूता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत नहीं हर पारा वार रहाऊ कीर्तन निर्मोल कहीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी

दोष्ट करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख ना

संकरा नहीं जानह पेव, खोज तहारी देव, देवियां नहीं जानह मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोड़ै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाओ नानक जपया गुर

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गणन ना जाए कीम ना पाए, बूढ़त लोहो साध संग करे, नानक जिसे प्राप्त करे, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किश कहन ना जाई, साचे सच अलख अपे वारा हाउ, करन करा मन आप, तिसको सदा मन जाप, तिसकी सेवा कर नीत, सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा।

आस सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जप जाप सब ते ऊच जाका प्रताप राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकुर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास एको नाम त्याए मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन चरण कमल हर सरन मन तन हर ओही त्याया आनंद हर रूप दिखाया तिस ही की ओट सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखन हार निदान सर्व की रेण हवीजै आप मटाए मलीजै आनंदेन त्याय नाम सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जगजीवन माधो पौ भंजन हृदमाहे अराध।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे दिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्स डीठा नाम प्रभु का घट घट बूठा मिटाने सब कल कलेश जिसते उपजे तिस मह प्रवेश प्रगटे अनूप गोविंद प्रभ पूरे।

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए त्रिण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचै दरबारे, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरोह पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जीव आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

नानक दास कंठ लाए राखी, कर कृपा पार ब्रह्म माया, राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई रहाओ, दर्शन पेखत हुए निहाल, जाकी तू

अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासे राम भगत मन पीजै रहाउ। मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह कछ ज्ञाना। कौन नाम जग जा कह सिमरै पावे पद निर्वाणा। भई दयाल कृपाल संत जन।

सुर में निमख एक उर तार है, जम को त्रास मिट नानक तेहे अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुध ले, छिन छिन औध घट निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ। तरनापो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहु नहीं समझे कौन कुमत उरजाना। मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रह सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार होए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाऊ किते देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा जे

लखन एई जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल आई है।

अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावह आसन त्याग काहे सच पावह ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागे धर कर मांगत लाज ना लागे रहाओ गावह गीत ना चीनह आप क्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए भस्म चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमदंड फूटै खापर भीख न पाए बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर

जैसे उतर सपारी मुंदरा फटक बनाई कान मुक्त नहीं विद्या विज्ञान जेवा इंद्री साध लुभाना पशु पये नहीं मिटे निशाना त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा शब्द विचार चूक ससोगा उजल साच सो शब्द होए जोगी जुगत विचारी सोए तुझ पह नौ नित तू करने जोग थाप उथापे करे सो होग जात सत संयम सच सुचीत नानक जोगी त्रिभवन मीत राम कली महला पहला खट मट देही मन बैरागी सुरत शब्द धुन अंतर जागी वाचै अनहद मेरा मन नीना गुरबचनी सच नाम पतीना प्राणी राम भगत सुख पाई गुरमुख हर हर मीठा लागे हर हर नाम समाइए रहाउ माया मोह विवर्ज समाए सतगुर भेटै मेल मलाए नाम रतन निर्मूल कहीरा तितराता मेरा मन तीरा हऊ मैं ममता रोग न लागे राम भगत जम का पौ भागे जम जंदार न लागे मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द विचार पय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी अन दिन जाग रहे लिवलाई जीवन मुकत गाते अंतर पाई अलिपत गुफा मह रह निरारी तस्कर पंचो शब्द संघारी पार कर जाए ना मन डुलाए सहज निरंतर रहो समाय गुरमुख जाग रहे अवतूता सद बैरागी तत् परूता जग सूता मारे आवे जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए अनहद शब्द बजै दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहिया निर्वाणी सुन समाद सहज मन राता।

में देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं कीजै, मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै, मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै, ऊंदर दूंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रुबीजै, नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय, राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कहिए सो प्रभु ते होई, जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाऊ, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान त्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा, शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अभेवा, कर्म मिले पावे सच नाव, तुम शरण लागत रहो स्वभाव, तुम ते उपजेओ भगति पाओ, जप जप गुरमुख हर नाव, हौ मैं गर्भ जाई मन पीनै, झूठ ना पावस पाखंड कीनै, बिन गुर शब्द

भया ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागै नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यो हेत वधाई हे की नाम विसार है भरम गया रहाउ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागै नाम बसारियो आवत जावत जन्म गया जां जम धाई केस गह मारै सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हिरदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेश करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंतकाल किस साथ ना चालै जो दिसै सब तिसै मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसै सुनावह पै सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरभउ ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख है सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न परजारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपुरी

जोग जुगत एव पाए नदरियावदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजै नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी केता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हौ गुर सलाही सदा अपना

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरतारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हौ गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेव है गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान बिचारी हम मैं तृष्णा मारी।

अहंकारी जिचर्यंतर सास तिचर सेवा कीच जाए मिलिए राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से ही जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से ही मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंत।

सृष्टि अपाई सिर सिर तंदह लाई तिसह सरेवो ता सुख पावहु सतगुर मेल मलाई अपना आप उपाई लख न लखना जाई आपे मार्ज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पलाई बड़ा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंध फिरै लोकाई जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई इकना नाम हो आप पलाई इकना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा सलाहे हो संतो हो तिस दी वड्डी वड्याई तिस बिन अवरना कोई राजा करत पावस बणत बनाई न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई तिसनो प्राणी सदा त्याव हो जिन गुरमुख बणत बनाई।

बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रहया विस्माज, मेरा प्रभ रविया सर्ब थाई, राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

जात पुत हारी जिन दिए तुद बंता अर मीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना शक्ति अमृत जिन भोजन दिए अंतर खान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना पेखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राख।

ऊंट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नाश है।

ज्ञान अंधेर बंजाई, करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई, एक शब्द लिवलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ्यो, साच शब्द बनयाई, जन्म मरण का सहसा चूका, बहुर कतहु ना

आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बांधिया भवजन पार पवाई बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभव कल।

हर प्रेम भगत बन आई संतो हो, सतगुरु खेप निबाही संतो हो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो हो, रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहन

ऐपी होसी सब जिन्या का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाइए पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोगन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रव्या एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संत हो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संत हो आदि जुगादी है।

सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले

संतोह शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारी।

आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया।

विचारिया। एक भरम पूले फिर दह दिस, एक नाम लाग सुआरिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावे। आवहु संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। करह कहानी कथ केरी, कित द्वारे पाई है। तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने है पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गाव हो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संत हो, कथे हो अकथ कहानी।

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा, तिने अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, विखव मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, थन्योह तिखी वालोह निक्की, एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वास ना समाणी, कह नानक चाल भगतां, जुग हो जुग निराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया।

मीन है। कित संयम धोता जाय, मन तो वो हो शब्द लागो हो, हर सिंह रहो चित लाय। कह नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू है हारिया,

जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहर हो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म रतन।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परने, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सत

जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले है अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन्न दिन हर लिव लागे।

दाता जे अगन मह आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया जां तिस भाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कहै मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाई किसे विटहु रहे लोक बिललाई ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनों सिर सौंपिए विचों आप जाई।

मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर तेरा आस जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हरे आपे

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत कित, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर आन रस सब बिसरे, जां हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद करमक माया हे करमक माया तुद शरीरा जां तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम महजोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर ने हालिया एहो इस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलया देव दृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो साचे सुनने नो पठाई साचे सुनने नो पठाई शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वडाणी तां की गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया कह अनेक रूप नाओ नव निध तिसदा अंत ना जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया एहो साचा सोहिला साचे कर गावहु गावो ता सोहिला कर साचे जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जा तुद भावे गुरमुख जिना बजावे एहो सच सबना का खसम है।

भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आप पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जन है केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर भाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे सतगुरु प्रतख होंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबाण हर रंग गुर पावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जियो, सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आन निवाया, हर गुरह भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो, राम कली महला पंजवा शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोया कट कट सोया, हत अमृत प्रिय गूड़ा, नाल होवंदा लह ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा, माया मद माता होची बाता, मिलन न जाई परम तड़ा, कहो नानक गुरबिन नाही सूजै, हर साजन सब कै निकट खड़ा, गोविंदा मेरे गोविंदा, प्राण अधारा मेरे गोविंदा, किरपाला मेरे किरपाला, दान दातारा मेरे किरपाला, दान दतारा अपर अपारा, कट कट अंतर सोहनिया, एक दासी तारी सबल पसारी, जी जंत लै मोहनिया, जिसनो राख सो सच पाख, गुर का शब्द बीचारा, कहो नानक जो

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणू, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे जी बाणू। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याई सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणी है, कहो नानक घर प्रभ मेरे कै, नित नित मंगल सुनिए। राम कली महला पंजवां, हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है, राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है, उर तार हर हर पुरख पूरन, पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता, दुसह दुख भव खंडनो, जगदीश ईस गोपाल माधो, गुण गोविंद बिचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु, बिन सरैन चतारी है, चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा, नाम नरहर निदान जिनकै, रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल, सास सास त्याणा, किल विख हरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा, बिनवंत नानक रास जन की, चरण कमल है आसरा, गुण बेअंत स्वामी तेरे, कोई ना जाने, देख चलत दयाल, सुन भगत बखाने, जी जंत सब तुझ त्याव है, पुरख पत परमेश्वरा, सर्ब जाचिक एक दाता, करुणा मैं जगदीशरा, साधु संत सुजान सोई, जिसे प्रभ जी माने, बिनवंत नानक करहो कृपा, सोए तुझे पछाने, मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुर नाम दिया कुशल थिया, सर्ब इच्छा पुनिया, जल ने बुझाई शांत आई, मिले चिरी बछुनिया, आनंद हरख सहज साचे, महामंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का, गुरपुरे ते पाया, राम कली महला पंजवां, रुण चुनो शब्द अनाहद, नित उठ गाइए संतन कै, किल वेख सब दुख बनासन, हर नाम जपिए गुरमंतन कै, हर नाम लीजे अमयो पीजे, रैन दिनस अराधिए, जोग दान अनेक क्रिया, लग चरण कमल है सादी है, भाओ भगत दयाल मोहन, दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर, त्याए स्वामी नर हरै, सुख सागर गोविंद सिमरन, भगत गावह गुण तेरे राम, अंद मंगल गुर चरणी लागे, पाए सुख कनेरे राम, सुख निदान मिलया दुख हरिया, कृपा कर प्रभ राखिया, हर चरण लागा भ्रम पौ भागा, हर नाम रसना भाखिया, हर एक चितवै प्रभ एक गावै, हर एक दृष्टि आया, बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा, पूरा सतगुर पाया, मिल रही है प्रभ साध जना, मिल हर कीर्तन सुनिए राम, दयाल प्रभु दामोदर माधो, अंत न पाइए गुनिए राम, दयाल दुख हर शरण दाता, सगल दुख निवारनो, मोह सोग विकार बिखड़े, जपत नाम उदारनो, सब जी तेरे प्रभु मेरे, कर कृपा सब रेण थीवा, बिनवंत नानक प्रभ मया कीजे, नाम तेरा जप जीवा, राख लिए प्रभ भगत जना,
अपनी चरणी लाए राम। आठ पैर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे पवजल, रहे आवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच्छ पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक प्रभ आप मेले, फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवां, संत सलोक। चरण कमल शरणागति, आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधी है, विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो, तिस बिन अवर ना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरी है, जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया, एक निमख मनहो ना विसर। गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसर। कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो। बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच। नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। शंत पै संकट काटे, नारायण दयाल जियो। हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह सिउ रंग लागा। कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो। सदा सदा पल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान। नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। संत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तां कै लाग जियो। भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै। साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै। जन्म मरण बेकार छूटे, फिर ना लागै दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ। सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। शंत सगल इच्छ मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो। आनंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा। आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी। हर एक त्यावो सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पावो। राम कली महला पंजवा, रुती सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म। बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो। नानक प्रभ भरपूर, किलविख काटन पै हरन। सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो। नानक नीत त्याए, संत जस गाव हो वडभागी हो। कर कृपा भगवंत जियो, रुती महा मूर्त घड़ी। गुण उचरत शोभावंत जियो, गुण रंग राते तन ते जन। जिन्नी एक मन त्याया,
सफल जन्म पया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया, पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्व पापा हंत जियो, बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सातुद भावसी, नानक नाम आधार, संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत शंत, रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो, कर नाह निचल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमुल्या, वड भाग पाया दुख गवाया, पई पूर्ण आस जियो, बिनवंत नानक शरण तेरी, मिति जम की त्रास जियो। श्लोक साध संगत बिन भ्रम मुई, करती कर्म अनेक, कोमल बंधन बांधिया, नानक

है कोई साजन संत जन, नानक प्रभ मेलन हार। बिन मिल बे शांत ना उपजै, तिल पल रहन ना जाए। हर साध शरनागति, नानक आस पुजाई। संत रोत शरद अडंबरु, असु कटके हर प्यास जियो। खोजंती दर्शन फिरत, तब मिलिए गुणतास जियो। बिन कंत प्यारे नह सूख सारे, हार कंगन त्रिक बना। सुंदर सुजान चतुर बेती, सास बिन जैसे तना। ईत उत दह दिस अलोकन, मन मिलन की प्रभ प्यास जियो। बिनवंत नानक तार कृपा।

प्रभ पूरन मिले, दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर, नानक भ्रम पै मिट गए, रमन राम भरपूर शंत, रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो, जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रो जियो, सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेवया, हार डोर शिंगार सब रस, गुण गाओ अलख अपेवया, पाओ भगत गोविंद बांछत, जमना साकै जोहे जियो, बिनवंत नानक प्रभ आप मेली, तहना प्रेम बशोह जियो। सलोक हर तन पाया सुहागिनी, दौलत नाही कीत, संत संजोगी नानका, ग्रह प्रगटे प्रभ मीत, नाद विनोद आनंद कोट, प्रिय प्रीतम संग बने, मन बांछत फल पाया, हर नानक नाम भने संत, हिम कर रुत मन भावती, माघ फगण गुणवंत जियो, सखी सहेली गाओ मंगलो, ग्रह आए हर कंत जियो, ग्रह लाल आए मन त्याए, सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया, देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी, मन जपया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री तारकंत जियो। सलोक संत सहाई जी के, पवजल तारन हार, सब ते उचे जानिए, नानक नाम प्यार, जिन जानिया से तरे, से सूरे से बीर, नानक तिन बलिहार न, हर जप उतरे तीर, संत चरण बराजत सब उपरे, मिटिया सगल कलेश जियो, आवन जावन दुख हरे, हर भगत किया प्रवेश जियो, हर रंग राते सहज माते, तिलना मन ते बिसरै, तज आप सरनी परे चरनी, सर्व गुण जगदीसरै, गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी, आदको आदेश जियो, मिनवंत नानक मया तारहो, जुग जुगो एक वेस जियो। राम कली महला पहला, दखनी ओंकार, एक

वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रे पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साथ संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भये मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सु

अमृत पी जाय, रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना, आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रह न कोई, किस पह करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर, गुरुदेव पतमती लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली, सास दीवानी बावरी सिर ते संकट टली, प्रेम बलाई रली सिउ मन मह शब्द आनंद, लाल रती लाली भई

घर हुए आथ देख निवै जिस दोए आथ हुए ता मुग्ध सियाना भगत बिहूना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी।

कंध ग्रंत बिन नावै क्यों छूटी है। जाए रसातल अंत गणत गणावै अखरी अगणत साचा सोए। अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए। टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वियोग। विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग। तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच। तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

हार मोए माया किसे ना साथ, हंस चले उठ डुम्मण माया भूली आथ, मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल, मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल, मेरी मेरी कर मोए विणनावे दुख पाल, गण मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण, नानक सच्चे नाम।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण चुर मुई बिन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजह गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय भावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचे नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा ले परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिय धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै कौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूले बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौमै खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे जिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुरे अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगै रह रास हमारी साचा अपर अपारु मस्तक काट तरी तिस आगै तन मन आगै देउ नानक संत मिले सच पाई सहज पाई जस लेउ क्या भवी है सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आई हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार जरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच बिचारू, रोस न कीजै उत्तर दीजै, क्यों पाइयै गुरद्वारू, इह मन चल तो सच कर बैसै, नानक नाम अधारू, आपे मेल मलाए करता, लागै साच प्यारू, हाटी बाटी रह निराली, रूख बिरख उद्यानी, कांद मूल आहारू खाइयै, औदू बोलै ज्ञानी, तीरथ नहाइयै सुख फल पाइयै, मैल न लागै काई, गोरख भूत लहारी पा बोलै, जोग जुगत बिद साई, हाटी बाटी नींद ना आवै, पर घर चित ना डुलाई, बिन नावै मन टेक ना टिकई, नानक भूख ना जाई, हाट पटन घर गुरु दिखाया, सहजे सच वपारो, खंडत निंदरा अल्प आहारम, नानक तत बिचारू, दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेव हो, खट दर्शन एक पंथा, इन बिद मन समझाइयै पुरखा, बहुड़ चोट ना खाइयै, नानक बोलै गुरमुख बूझै, जोग जुगत इव पाइयै, अंतर शब्द निरंतर मुंदरा, हउमै ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारै, गुर कै शब्द सो समझ परी, खिंथा झोली भरपुर रहिया, नानक तारै एक हरी, साचा साहिब साची नाई, परखै गुर की बात खरी, हुंदो खप्पर पांच भू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम संभाल, कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता, कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई, कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सह आवे जाई, नानक गुरमुख साच समाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, एहो तत बिचारै सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुर मिले अंधेरा जाई, नानक हौ मैं मेट समाई, सुन निरंतर दीजै बंद, उड्डै ना हंसा पड़ै ना कंद, सहज गुफा कर जाणै साचा, नानक साचे पावै साचा, किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी, किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी, गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी, चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया, चित बिद आसा मनसा खाई,

वह गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्भ जिया गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हौ मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किछ सूझै।

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै करियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाईए शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हम मैं जाल समाई, गुरमुख धरती साचे साजी, तिसमें है उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यो घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरिय सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर विद जाने, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाने, गुरमुख तारी पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते हम मैं जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रि भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावे बोले सब वेकार, नानक नाम रते तिनको जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाई, जोग जुगत सच रह समाय, बारह मह जोगी परमाई, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवे, सो पाए मुख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया उर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाई, गुरमुख परखै रतन सुभाय, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराई, नानक गुरमुख मेल मलाई, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई,

आत्म सुख धारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी एहो मन मैगल कहां बसी अले कहां बसै एहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा एहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे एहो मन निश्चल हिरदय बसी अली गुरमुख मूल पछाण रहे नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लहै सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रि भवन जोत सो शब्द लहै।

सच सफाख सच रपै रंग कबहू ना जावे जा एहो हिरदा दे न होती तो मन कैठ रहता नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे न होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाब कमल असथंभ न हो तो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप न रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रह तो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है न हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होए बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हूं मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणे शब्द काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सूझी पाई।

कोई, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। महला तीजा, क्यों कर इहो मन मारिय, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी, हऊ मैं छड्डै ना कोई, गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा, जीवत मरना सब को कहै, जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए, अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करी पौड़ी, दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा। पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बिचारा, सब किश तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नु फिरै तपा सदावै। परमे भूला सब तीर्थ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मुखंतर पावे। महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुरु नो मिले शब्द संभाले। सतगुरु की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन संसार की वर्तन, गुरमति घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिण, सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन। शब्दे ही सोजी पई सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए ना आखियन, जिनके चित में भरम किस दै दितै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई, महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने, बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सच्चो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

ज्यों बैसंतर धात शुद्ध हुए त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया तां बने आशिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया तां सौंपिया भगत भंडार।

सो जाए सियाण, होर पकड़ हिंदू मुसलमान, सबना का दर लेखा होए, करनी बाज हो तरे ना कोई, सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना, हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरह, ना सत मूंड मडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिरह, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहु चरह, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई, जिसनो दे तिसे आए मिले, नानक ताको मिले बढ़ाई, जिस घट भीतर शब्द रवै, सब घट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खवाई तिस कौन कह, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे पलावे कौन, जिसे पलाई पंध सिर किसे दिखावे कौन। महला पहला। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे।

संताप औ हट पट्टण मह भीख्या करै सो अवतूती शिवपुर चढ़ै बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना।

पौड़ी, हर मंदिर सोई आखी जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया, सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना जा।

कहना मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूहु केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता हुसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपै।

आया। परशुराम रूवे घर आया, अजय सुरूवे भीख्या खाई, ऐसी दरगाह मिले सजाई। रूवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। रूवे दह सिर लंक गवाई, जिन सीता आंधी डौरू वाई। रूवे है पांडव भये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर। रूवे जनमेजा खोए गया, एकी कारण पापी भया। रोवे है सेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़। रोवे है राजे कन पड़ाए, कर कर मांग है भीख्या जाए। रोवे है किरपन संच है धन जाए, पंडित रोवे है ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेख लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने, अवर कारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी है, बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी। काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरै, गुण माहि समाया। सच्ची बाणी सच है, सच मेल मलाया। सब किछ आपे आप है, आपे दे वडियाई। श्लोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै, रत्ना

गुथली रतनी खोली आई वखर तै बणजारिया दुहा रही समाई जिन गुण पल्ले नानका माणिक वणजह से रतना सार न जाननी अंधे बतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखीजै बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुलीजै अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनीजै तित घट अंतर चानना कर भगत मिलीजै।

दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे

नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है महला पहला। नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल, मनुआ अंध ना चेतई पड़े अचिंता जाल। नानक चेत अचेत है चिंता बद्दा जाए, नदर करे जे अपनी ताय आपे लए मलाए। पौड़ी से जन साचे सदा सदा, जिन्नी हर रस पीता। गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता, सब किस घर ही माहे है वडभागी लीता। अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता, आपे मेल मलायन आपे दे बुझाई। श्लोक महला पहला, वेल पंजाया कत बनाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया। लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सुई

ना कपड़ पाट सुई धागा गंड माह पाख के चल नाही कड़ी मोहत किस हंड सच पराना हुए नाही सीता कदे ना पाट नानक साहिब सचो सचा किचर जापी जापे महला पहला सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर अपार शब्दे सान रखाई लाए।

सच्चो पाइए कूड़े कूड़ा माना। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पया परवाना। महला पहला साहिब मेरा उजला जे को चित करे। नानक सोई सेवी सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवी है जित सेवे दुख जाए। अवगुण वंजन गुण रवह मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेशदा। गुरमुख पतियायन एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन। जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे ना लायन। नानक नाम ते आई है सच्ची वड्याई। शुद्ध राम कली की वार महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवा। जैसा

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्म टिया अगम अथाह बेअंत परे परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल आऊं तिस देवां मन अपना नित हिरदै रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

सलाहिए, जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिए, कोई ना किस ही वस सबना एक तार, पाले बालक वांग दे कै आप कर, करदा अनद बनोद किसु ना जानिए, सर्ब तार समरथ हो तिस कुर्बानिए, गाइए रात दिनंत गावन जोगिया, जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया। श्लोक महला पंजवां, भीड़ो मोक लाई कीतियन, सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन, सो प्रभ सदा संभाल, प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा, लहुड़े बालक पाल, दयाल हुए सब जी जंतर, हर नानक नदर निहाल। महला पंजवां, बिन तुद होर

मन की भुख गुरबण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दा तार मनो ना विसरे घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरे अंतर बाहर संग क्या को लुक करे जिस पात रख है आप सो भवजल तरे भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करे सो पूरा प्रदान जिसनो बल तरे जिसे जराए आप सोई अजर जरे तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन तरे सलोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाय धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रत्ते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै।

जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाय महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन ससंजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हा जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग।

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसां विच बैठा भग न बणी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जां हंस सभा विचार।

का बगला मत हुए मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिच्चे जा हर एवं पावे सतगुर सर्वर रतनी पर पूरे जिस प्राप्त सो

प्रथम माणक सरवर पर पूरे खाए खर्च रहे तोट न आवे सरवर हंस दूर ना हुई करते एवं पावे जन नानक जिस दे मस्तक भाग तुर लिखिया सो सिख गुरु पह आवे आप तरिया कुटंब सब तारी सभा।

जाहि भौजल बिखमसगाह गुर शब्दी पार पाहि जिनको लगी प्यास अमृत से खाहि कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहि सब

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाई पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कनावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीर्थ नाइय।

तो होगा हरख आनंद, हुक्मे जपे निरोधर गुरमंद, हुक्मे आवन जान रहाय, नानक जाको भगती लाई पौड़ी, हौ तिस ढाडी कुर्बान, जे तेरा सेवदार, हौ तिस ढाडी बलिहार, जे गावे गुण अपार, सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार, सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार, वो ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार, मंगै अमृत नाम ना आवे कदे हार, कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार, सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाऊ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपुरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे।

जिस भगती लाए नानक विरले हे पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खाने दिन सरहण तेरा नाऊ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाऊ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया सलोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौ तुद बिन अड ना लहंदी महला पंजवां सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पोलू है हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारणो जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारणो जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारणो जिसनो लाए सच तिस सच संभालणो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जानो।

0: दिखाया जाहर
1: जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवा आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए नानक जित आहर जग उदर है विरला बूझै कोई पौड़ी वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर।

दलाली सतगुरु आखै सच्चा करी सा बात हुवै दरहाली गुरु अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्लै होई जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चै बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर क्याली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान।

ज्ञान मेलो गुर का शब्द गुण की नरी तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दी नरी कोई है रे संत सहज सुख अंतर जा को जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस भाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ भाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई भाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

आई। जैसा मगहर तैसी कांसी, हम एक कर जानी। हम निर्धन ज्यों इहो धन पाया, मरते फूट गमानी। करै गमान चुभै तिस सूला, को काढ़न को नाही। अजै सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो राधे। हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन।

डालो ते कुटवारी मेरी दिवस रैन तेरे पाँव पलोसो केस चवर कर फेरी हम कुकर तेरे दरबार पौख है आगे बदन पसार रहाओ पूर्व जन्म हम तुमरे।

भोगी जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनिद धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाउ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटे जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

पीले सख्त सहारं पैसीले गगन मजारं बेदियले चक्र पोंगा पेटियले रायन संगा चूकियले मोह मै आसा सस कीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकते बक शब्द सुनाए।

दे परमियले पंच जनास्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांदियले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवितना गावोगो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावोगो बैरागी रामह गावोगो।

बंद रहा उगो चंद सूरज दोए सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देखना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिओ राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कमन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेद जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तऊ ना पूजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजै हर का नाम नित नित है लीजै रहाउ गंगा जो गोदावर जाइय कुंभ जो केदार नहाइय गोमती सहस गऊ दान कीजै कोट जो तीर्थ करै तन जो हिवाले

जन हिरण हुए कैसे, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूट है, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाऊ, हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है ना नासी, कौरव दास सब है नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन

क्या निशानी, तह बाजे शब्द अनाहद बाणी, तह चंद ना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै, अमृत रस गगनंतर पीजै, एस कला जो जाने प्यो भेटै तास परम गुरुदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर खाती, जागत रहै सो कबहो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै, बीज मंत्र लै हिरदै रहै, मनुआ उल्ट सुन मह गह, जागत रहै ना अलिया पाखै, पांचो इंद्री बस कर राखै।

हारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सोन झर झरे जगन्नाथ स्यों गोष्ट करे चौमुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे ढुलके चवर शंख कन गाजे।

जप एहन सुनाम हरे कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरे रहाउ हर हर नाम जपह आराध सेवक भाई खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यो पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गाव है मुख बोल है नर नर हरे पंच दुख असाध नगर में है एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्याव है हर के भगत हरे तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों मैं मूड मुग्ध निस्तरे किरपा किरपा तार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राख हो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जपियो गुरबचनी हर धारी हर किरपले रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायु सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यों देखै सस कमले उनवै कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरै स्वामी लोच हम लाई हम जीव है देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाई हर मेल हो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायु हम सतगुर चरण पखे रहाउ उत्तम जगन्ना जगदीश्वर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे ज्यो चंदन संग बसै निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगन बिखिया बिखै के बहु बार बार निमखे अवगन यारे पाथर पारे हर तारे संग जनखे जिनको तुम हर राख हो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन

नानक स्वामी हम राखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारियो प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह तूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक को दया प्रभ धारो हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाऊ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानु हो हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानु हो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यों सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौरे दे उस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पांच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भये हर आपते सुने मेरे लाल जन नानक हर हर मिले भये गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कल युग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद ध्यावे। कवन योग कवन ज्ञान ध्यान।

सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे नट नारायण महला पंजवां दुपदे

वीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई।

अंचला गहायो जाने अपने को मन भी दो प्रेम की खोरे जस गावत भगत रासे उपजेओ माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आन ना पेखो होरी नानक मेल लियो।

आठ पहर गुण गायन रहाउ साधु धूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो सतगुर दीनो दान रहाउ सुख दाता दुख भंजन हारा गाऊ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान।

दहलिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन सम्हारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौं सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवै जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नख खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींचै।

हर अमृत सर नावारी, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारी, रहाउ संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजाको, लै बैकुंठ सधारी,

बिचारी सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना सम्हारी जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डे पनेहारी साकत सियो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो दसी तज साकत परे परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारी गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

सब एका नदर निहारी हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे सिष्ट सवारी जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाऊ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारी सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह कहो हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारी मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी नित नित काया मज्जन किया नित मल मल दे सवारी मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाव साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत।

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वड भागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म बधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

पतत पावन नाम हरि कोट भगत उधार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण में है सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख है बरस मेग जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदे माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाद तुही ऊच मूचो बहो अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा यही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संत है माथ मोर नैन दर्स पेखो निस भोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बस है मेरे चीत संत आ गया मन है मीत मेरा कमल बिकसै संत डीत संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास।

जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवां मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाउ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोई।

मारू महला पहला घर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुहे लेख पए ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तौ गुण नाहीं अंत हरे।

तेती रस रस चोग चुगह नित फसह सूटस मूड़े कवन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई भया मनूर कंचन फिर होवै।

तब नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोवन तन पछताणी।

पाएही, बिन दर्शन कैसे रहूं स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला। मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांजी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए नानक सिर दे छुट्टी है मन

अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोवें सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम मैं जलिया मनो विसारी।

बल कहियत है इंद्री किसते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझै कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बनासी जो तिस पाणा सो सत कर मानिया काटी जम की पासी पणत नानक लेखा मांगै कवना जा चूकै मन अभमाना तास तास धर्म राय जपत है पए।

गुनहा बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए हर की चरनी लाग रहा, विचो हो आप गुआई मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याई।

जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरी।

गण गंधर बे जपियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुरतार कृपा हर नाम दरड़ायो जन नानक नाम नया मारू महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निदान लै गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते लए छडाए जिथै अवकट गलियां पीड़ियां तिथै हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुत बंदपो मैं हर बिन अवर नाम आए रहाऊ।

मन प्यारिया मित्रा मैं हर हर नाम धन रास गुरपुरे नाम दिरडाया हर तीरक हर साबास रहाउ हर हर आप मलाए गुर मैं दसे हर तन रास बिन गुर प्रेम ना लभई जन वेखो मन निरजास हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर साबास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सतगुर तुठा खोल दे

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाऊ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाई कथ कहानी, संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी। मेरा मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी। वडभागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुड़ सुजानी जन नानक सरनागती कर कृपा नाम सुमानी मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

साग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा समा

नाउ। मंगत जन जाचा हर देव पसाऊ, हर सत सत सदा हर सत, हर सत मेरे मन पावे जीओ। नवे सिदर सर्वह अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होए मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जीओ। माया मोह भिकम है भारी, क्यों तरिए दुत्तर संसारी। सतगुरु बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लगावे जीओ।

प्यारा हर पावै हर थाई पावै जीओ मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विख काटै हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चल दया नाल सखाई जीओ जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जापै जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पा

पर हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन सेवक भगत सबे निस्तारी दस अठ चार वेद सब पूछो जद नानक नाम छाई जियो मारू महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डर पै धरत कास नखियतरा।

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्प है सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरप है केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरप है अत डरप है धर्म राया सगल समगरी डर है व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रु बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरयो वदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो।

नानक तिस को कबू ना गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वा को फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया।

सुनत भव तरी त्यो रंग न लाभ सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव।

गुण प्रम छूटा जो प्रभ पय सहाय मारू महला पंजवा अंतर जामी सब बिद जाने तिसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पीतर।

बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग थार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बिहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावथ सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत पर की को अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानत खतरी।

लगह तपत थम गल लाई रे नर काए पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंगना पार न परना जाय काम

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई। जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह मनिया सुपाई।

बाबू जी अखुट भंडार समाया था, चरण चरण चरण गुर सेवे अकाड़ घड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खिलाया था, कहो नानक परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा जिस है साज निवाजिया,

दिसताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कै तीर्थ भ्रमियो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए राम।

राख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन पू

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड़ियाई सुबा नानक खसम प्यारा मारू।

पात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकी चरण कमल उरे अंतर धारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाउ मिथ्या वस्त सत करमानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदलै जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझै करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी।

ओठ ओठ फिर तावे, मन तन बासना बहुत बिस्थारा, अहम में मूठो बेचारा, अनक दोख अर बहुत सजाई, ता की कीमत कहन ना जाई, प्रभ बिसरत नरक में पाया, तह मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिस को होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन, जिस पावे तिस ही निस्तारन, अंधकूप ते काड नहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, महा अग्न ते आप उबारिया।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याई।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह

सगल ते अनु तजियो मन ते अभमानु निचल तिन का ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतन।

सरन भज संग साधु भव सागर उतर है पार। मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ। जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार। गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबहु ना।

कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग वजोग तुरो ही हुआ पंच धात कर पुतला किया साह कै फुरमाएड़ै जी देही विच जीओ आए पया जिथै अगन पखै पड़हारी ऊर्द मुख महागुबारी सास सास समाले सोई उतै खसम छड़ाए लया विचों गर्भै निकले आया खसम बसार दुनी चित लाया आवै जाए पवाई है जो

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

साहिब निर्मल मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाऊ हर पढ़िए हर बुझिए

यासमुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग पाता महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लगावन हार तिथे पवन ना पाव को

सो पार गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

छै सुख नहीं गाडे ला दे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

देख मुखत मान तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुद भावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे

आई नानक नाम रखे से निर्मले साक्या रहे समाई मारू महला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर एहो मन अवगण बांधिया सहो दे शरीर पूरे गुर बख्शाई है सब गुनहा फकीर क्यों रही है उठ चलना बुझ शब्द विचार।

चलना मुखे अमृत नाम मेरे ठाकुर हाथ वडियाइया मिल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देखै सोई जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदया जम

खार समुंदर टंडोलिए एक मणिया पावे दोए दिन चार सोहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवी।

थीए पारस संग पीजे वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजे पेखी हाथ ना लबई तीरथ नहीं दाने पूछो बेद पढ़ंतियां।

कर ही रह, ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पीटै, दुर्मत कुमन की रह, दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका, तृष्णा हुए बधेरै, काची पिंडी शब्द ना चीनै, उधर भरै जैसे ढूरै, बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी, गुर कै शब्द एक लिव लागी, तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ, कोली गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र पेख पेखारी, कापड़ फार बनाई खिंथा, चोली माया तारी, कर कर मांगे जग प्रबुद्ध, मन अंधे पतहारी, परम पलाना शब्द ना चीने, जुए बाजी हारी, अंतर अगन ना गुर बिन बूजे, बाहर कुवर तापे, गुर सेवा बिन भगत ना होवी, क्यों कर कीन से आपे, निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे, अठ सठ तीरथ परम बगूचे, क्यों मल धोपे पापे, छाणी खाक बेभूत चढ़ाई,

उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई है अफरे उपार अफार टरे रहाऊ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करूं हरि तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ लै जग जन्मिया सिर शक्ति घर वास धरी लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरी कर्ण पलाव करे नहीं पावे एते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड कतंब स्यों प्रीत करे खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन

वेद संभाल है बिख भूले लेखारी कल्लर खेती तरवर कंठे बागा पहर है कजल चर है एहो संसार तिसै की कोठी जो पैसै सो गर्भ जरै रैयत राजे कहां सबाए दोहो अंतर सो जासी कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी मारू महला तीजा घर पंजवां अष्टपदी।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे गुर के

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासक मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

मित्र सद्धरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

गोपाल गुण नित गाहु नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन लीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन लीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किशनी।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हृदय वासै, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुध परगासै, दुर्मत दुख तजावना। दर्शन भेट तो होत पनीता, पुनरप गर्भ ना पावना। नौ निद रिद सिद पाई, जो तुमरै मन पावना। संत बिना मैं थाओ ना कोई, अवर ना सूजै जावना। मोहे निर्गुण को कोहे ना राखै, संता संग सुमावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन भदे हर हर रावना। मारु महला पंजवा, जीवना सफल जीवन। सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ। पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना। खावना जित भूख ना लागे, संतोख सदा तृप्तीवना। पहनना रख पत परमेश्वर, फिर नांगे नहीं थीवना। भोगना मन मदे हर रस, संत संगत महलीवना। बिन तागे बिन सोई आनी, मन हर भगती संग सीवना। मातिया हर रस महराते, तिस बहुड़ना कबहू औखीवना। मिलो तिस सर्ब निदाना, प्रभ कृपा।

तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरै परमंता, दुहू व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विध वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राख है तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जो नी फिरना जो वरताए सोई पल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लाभ है तित तित लगना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औध विहानिया।

जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातू करता दिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लेंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई हे। आपे रतन अनूप अमोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस

साहिब सबना सिर पाए मिले पौ जाई है, भूले चूके मार्ग पावे है, आप पलाए तू है समझावे है।

जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गले मन स्यो लूजै मनसा मन है समाई हे माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत

जम्मण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सर सुपार।

राती। हर प्रभ संगी पहो ना परांती, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख दे तू है मन भाव है।

सत सत वरतै गहर गंभीरा, सच्चा साहिब सच परखै, साचै हुक्म चलाई हे। सत संतोखी सत गुर पूरा, गुर का शब्द मन्ने सो सूरा, साची दरगाह साच न।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई रीतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाण मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ पर यदि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे तर।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नाव है, ज्यों तुद भावै तिवै चलाव है, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मन

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजै अलख अपेवा भगतां का गुण का।

सुरत समाई है कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे हर बिसरे दुख पाई है भोजन साच मिले।

तन तन अर्प मिले जग जीवन हर सियों बणत बनाई प्रभ की गत मित कोई ना पावे जे को वड्डा कहाए वडाई खावे साके साहेब तोट ना दाती।

भोग वे आपे, जो किछ करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवह पवाए, एक हठ कर मरह ना कीमत पाए। गाते अवगत की सार ना जाने, बूझै शब्द कमाई है। एक तीर्थ नाव है अन ना खाव है, एक अग्न जलाव है देख पाव है। राम नाम बिन मुक्त ना होई, केत बिद पार लंघाई है। गुरमत छोड़ उजड़ जाई, मन मुख राम ना जपै अवाई। पच पच बूढ़ है कूड़ कमाव है, कूड़ काल बैराई है। हुक्मे आवै हुक्मे जावै, बूझै हुक्म सो साच समावै। नानक साच मिलै मन पावै, गुरमुख कार कमाई है। मारू महला पहला, आपे करता पुरख बिधाता। जिन आपे आप उपाय पछाता,

तह पर हर दुख दालत जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल होय रह भगत लिवलाई है। गूजो हर जन सतगुर बाणी एहो जोबन सास है देह पराणी। आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हउमै दोह मार्ग पचह पचाई है। छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यूं तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी पड़ दज्जे।

एकहु कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी इउं पव जल पार लंघाई हे देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई हे ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई हे गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसह तखत।

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजे पेंजे रली करीजे, बिन अब भगती बाद मरीजे।

शब्द कर जाने किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर्स जै न कोई साच शब्द पेंज है पत होई आपे बख्श लए किस पावे हम मैं गर्भ निवाराई गुर कृपा ते हुक्म पछाणै।

जिन तन मन दिया सुरत सुनोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीनाहे गुर सरवर हमहंस प्यारे सागर मह रतन लाल बहुसारी मोती माणक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाह अगाध निराला हर अंत न पाइए गुरु गोपाला सतगुर मत तारे तारनहारा मेल लये रंग लीना है सतगुर बाज हो मुक्त कनेही।

आए अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट अपाए रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाई है जैसा की चैत सो पाई है सतगुर बाजो हो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

फल पावहु साच बखर के वपारी बिरले लैलाहा सौदा की नाही हर हर नाम बखर लै चलो दर्शन पावहु सहज महलो गुरमुख खोज लह जन पूरे यों समंदर सी की नाही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर्म।

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छदाई। हम मैं बंधन सतगुरु तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुरु मिलो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हम मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन शिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुर आ राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर पवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजे पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद ताना नाम जपो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रले तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो हो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह नाम वसार कहां सुख पावह त्रेहो गुण अंतर।

राम जपहु अंतरगत ध्यानी, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरे जम जोहन लागे। सब सुख जाहे दुखा पुन्य आगे, राम नाम जप गुरमुख जी।

मत खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहु हर गुण गावहु तत विचारहु हर लिव लावहु।

सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

कूड़ कपट महती का एहन सनिंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे हो पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पव जल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई हर जपिये पार उतारा ही गुर की दात ना मेटे कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ ना आवे मन सो प्रभ अपरे अपारा ही गुर ते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहो अपना किया करारा ही हम मैं ममता कर दाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुर पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती।

वो अंत न जानी जा को अलख लखाए आपी अकथ कथा बुद्धता हाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर सहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

नाम काटे अंतर पूजा अवरना दूजा काहा हे ओढ़ना कथन है सिफ्त सजाई ज्यों तुद भाव है रह रजाई दरगाह पहंदी जान सुहेले हुक्म सच्चे पातशाह हे क्या कहिए गुण कथ है कनेरे अंत ना पाव है बड़े बड़ेरे नानक साच मिले पत राख हो तू सिर शाह पातशाह हे मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गाड़े अंदर।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सोई।

जाने जो किस करे सो अपन भाणे लख चौरासी जी अपाई भाणे सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

कोई, गुर बिन सो जी किन ना होई, साच मिलै सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरहों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे

तुझते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चांद ना सूरज।

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा।

गुर शब्द सुनाया, कर कर देखे हुक्म सबाया, खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे, गुप्त हो प्रगटी आएंदा, ताका अंत न जाने कोई, पूरे गुर ते सूझी हुई, नानक।

आया हुक्म समाया हुक्मे दीसै जगते उपाया हुक्मे सुर्ग मच पहे आला हुक्मे कला रहाईंदा हुक्मे धरती तौल सिर पारन हुक्मे पौन पानी गहनारन हुक्मे शिव शक्ति घर वासा हुक्मे खेल खलाईंदा हुक्मे आडाणे आगासी हुक्मे जल थल त्रे पवन वासी हुक्मे साहस ग्रास सदाफन।

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई। इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे। इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा। सुन्नो चंद सूरज गहनारी, तिसकी ज्योत त्रे पवन सारी। सुन्ने लख पार नरालम, सुन्ने ताड़ी लाएंदा। सुन्नो धरत आकाश पाई, बिन थम्मा राखे सच कल पाई। त्रे पवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा। सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी, सुन्नो उपजी सुन्न समाणी। उत्पुज चलत किया सिर करतै, विस्माद शब्द देखाएंदा। सुन्नो रात दिन सदोह किए, उपत खपत सुखा दुख दिए। सुख दुख ही ते अमर हतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा। शाम वेद रिग जुजर अथर बन, ब्रह्म

सुनो उपजे दास अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजी, सब लिखिया कर्म कमाएंदा, गुरमुख समझै रोग ना होई, ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगा जगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाएंदा, पंच तत् सुनो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्त कलीखे, पाप पुन भी जाएंदा, उत्तम सतगुर पुरख निराली, शब्द रत्ते हर रस मतवाली, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरे भाग मलाएंदा, इस मन माया को नेहो कनेरा,

सच्चे घर बारा नानक निर्मल नाद शब्द धुन सच रामै नाम समाईंदा मारू महला पहला जह देखा तह दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग किसकी छाया जिस बाप न माया ना तिस भैन ना भ्राउ कमाया ना तिसे उपत खपत कुल जाती ओह अज रावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत सीतल सहज भाई निवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी।

गुरु ज्ञान रतन दी पाया, पंच तत् मिल एहो तन किया, आत्म राम पाए सुख तिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना तिस भूख प्यास मन मानिया, सर्ब निरंजन घट घट जानिया, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुपाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेण रसाल बजाया, बेण रसाल बजावे सोई, जाकी त्रे पवन सो जी होई, नानक बूझो हो एह बिद गुरमत, हर राम नाम लिव लाया, ऐसे जन बिरले संसारे, गुर शब्द विचार है रह निरारी, आप तरह संगत कुल तार है, इन सफल जन्म जाग आया, घर दर मंदर जान सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई, काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतर दस हाट दीवे दोए साखी, सेवक पंच नाही बिख चाखी, अंतर वसत अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आद जगादी है पी होसी, सहसा परम चुकाया,

महल निवास निरंतर आवण जान चुकाया। ना मन चले ना पौन उड़ावे, जोगी शब्द अनाह दबावे। पंच शब्द चुनकार नरालम, प्रभ आपे वाही सुनाया। पौ बैरागा सहज समाता, हूं मैं त्यागी अनहद राता। अंजन सार निरंजन जाने, सर्व निरंजन राया। दुख पै भंजन प्रभ अवनासी, रोग कटे काटी जम फासी। नानक हर प्रभ सो पौ भंजन,

को पछाणै, सब तिसका चोज सबाया। आपे साहु आपे वणजारा, आपे परखे परखणहारा। आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया। आप दयाल दया प्रभतारी, घट घट रब रहया बनवारी।

बोल निरंजन गाया, हों मैं अमित शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई। नानक हर जस हर गुण लाहा, सत संगत सच फल पाया। मारू महला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरहो भवजल जग तरना। गुर बोहिथ गुर बेड़ी तुलहा, मन हर जप पार लंघाया। हों मैं ममता लोभ बनासन, नौ दर मुकते दसवै आसन। ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आपे उपाया। गुरमत लेव हर लिव तरिया।

तरना सच गुर शब्द जितै लग तरना कथ कथै देखै अपरंपर हुन गर्भ ना जोनी जाया सच बिन सत संतोख ना पावै बिन गुर मुक्त न आवै जावै मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन भव जल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महाबिख भरिया।

चलह अभमानी उपज बिन सुख पाया उपज बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जम पुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई है बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त।

ए सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया।

हर जप अकुल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत यगन निवार समाई, मन मुख नाम जपो जग जीवन, हृदय अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूजै शब्द पतीजै, उस्तत निंदा किस की कीजै, जिन्हों आप जपो जगदीसर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मांड खंड सो जानो, गुरमुख बूजो शब्द पछाणो, कट कट भोगे भोगण हारा, रह अतीत सबाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, सरवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया।

नानक गुरमत सो पाया। अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरपहो गुर शब्द पछाने। अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया। निरपहो सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया। नानक हर जस संगत पाई है, हर सहजे सह

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बने आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वडभागी साचै नाम सदा निभलागी। अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किनै पछाणी। सच्चा शब्द रते बैरागी आवन जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

ना किशु ना सूजै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई।

है सब सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई। एको रव रहया सब अंतर, तिस बिन अवर ना कोई। लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए। सबना रिजक समाहे आपे, कीमत होर ना होई हे। माया मोह अंध अंधारा, हम मैं मेरा पसरिया पासारा। अन दिन जलत रह दिन राती, गुरबिन शांत ना होई है।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरै सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवै पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाई। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द होमै किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम भेख परमाई हे। एक ग्रह कटंब मह सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावै कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते नंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस नान दान करह नहीं बूझै।

होए दुख माहे समानी, बहुते भेख करै नह पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनो कहिए जा आप कराई, जित पावै तित राहे चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावै

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम भोजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावह अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना

सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी हे। ब्रह्म ब्रह्म जो नी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया। हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै, चीनै शब्द अबनासी हे। काम क्रोध भरे हम अपराधी, क्या मुँह लै बोलहै ना हम गुण ना सेवा सादी।

आपे बख्श लह सुख पाए सद ही नाम नवासी है। यो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज व्यापारा सच

एहो मन पीजै माया लहर शब्द निवारी एहो मन निर्मल हो मैं मारी सहजे गुण गावे रंग राता।

विष्ण महेश विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवि जय ही वेद पढ़ है हर

वेद बाद सब आख वखाण है, ना अंतर भीजै ना शब्द पछाण है। पुन पाप सब वेद दिरड़ाया, गुरमुख अमृत पीजै ही। आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। नानक नाम रते मन साचा, सचो सच रवीजै ही। मारू महला तीजा, सच्चा सच्चा तख्त रचाया। निज कर वसिया तिथै मोह ना माया, सद ही साच वसिया घट।

सच कमावे साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी हे सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी हे बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी हे साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ।

जन उबरे होर माया मोह खुआरी गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

भगत परे भंडारी हे, आपे वेखै हुक्म चलाए, अपना भाणा आप कराए, नानक नाम रते बैरागी, मन तन रसना।

जीवन जिन अपनाया पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदै आपे लाई जिस पावै

लह तोल। ज्यों भावै त्यों राखह रहना, गुरमुख एको जाताई। जातुद पाणा था सच्ची कारै लाई, अवगण छोड़ गुण माहि समाई। गुण मह एको निर्मल साचा, गुर कै शब्द पछाताई। जह देखा तह एको सोई, दूजी दुर्मत शब्द खोई। एक समह प्रभ एक समाना, अपने रंग सद राता ही। काया कमल है कुमलाना, मनमुख शब्द न बुझै इयाना। गुर प्रसादी काया खोजे, पाई जग जीवन दाता ही। कोट गही के पाप निवारे, सदा हर जियो राखै उर तारी।

कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सहलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा।

दुख द्वारा पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाताई माया मोहे हर स्यों चेतना लागे दूजे पाए घणा दुख आगे मन मुख परम भुले भेख धारी अंतकाल पछताताई हर कै भाण हर गुण गाई सब किलविक काटे दुख सबाई हर निर्मल निर्मल है बाणी हर सेती मन राता ही जिसनो नजर करे सो गुण निद पाई हम मैं मेरा ठाक रहाई गुण अवगुण का एको दाता गुरमुख विरली जाता ही मेरा प्रभ निर्मल आते।

मलाई सच्ची भगती आपे लाई साची बाणी सदा गुण गावे इस जन्म में कालाहाई गुरमुख वणज करह पर आप पछाण एक सबिन को अवर ना जाण है सच्चा साहु सच्चे वणजारी पूंजी नाम वसाहाई आपे साजे सिट अपाई बिरले को गुर शब्द बुझाई सतगुर सेव है से जन साची काते जम का पाही पन्ने कड़े सवारे साजी माया मोहे दूजे जंत पाजी मन मुख फिर है सदा अंध कमावे है।

सच्चा सच्ची नाई गुरमुख देव मन वसाई जिन मन वसया से जन सो है तिन सिर चूका काहाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई सदा शब्द सलाही गुणदाता लेखा कोई न मंगे ताहाई ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा अंत न पावह अलाखे अपेवा जिनको नदर करह तू अपनी गुरमुख अलख लखाही।

अपारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाण तावत राखै इकत कर आण नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावे है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई सदा सदा तेरे गुण गावा सच्चे साहिब तेरे मन पावा नानक साच कह बेनंती सच देव हो सच समाहाई मारु महला तीजा सतगुर सेवन से वड भागी अन दिन साच नाम लिव लागी सदा सुखदाता रव्या काट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई हौ मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह एक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो

लाहाही दुख सुख करतै तुर लिख पाया दूजा भाव आप वरताया गुरमुख होवै सो अलिपतो वरतै मनमुख का क्या विसाही से मनमुख जो शब्द ना पछाण है गुर के भय की सार ना जान है भय बिन क्यों निर्भउ सच पाई है।

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो निवलाई, हर गुण गावह सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई ना।

पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।